सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अभी होंगे हिंदी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का

0: दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: की रचना में मानव एक आदर्श और सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि उसके पास चिंतन शक्ति और विवेक शक्ति है। मानव जीवन ही अन्य सभी प्राणियों के लिए भी अनुकरणीय होता है। मानव जो कुछ सोच रहा है और जैसा सोच रहा है, उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इन तरंगों का प्रभाव स्थूल प्रकृति पर, अन्य मानवों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यदि मानव समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो पशु भी अधिक हिंसक हो जाते हैं। मानव ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मानव शांत और सुखी तो मानो पूरा संसार सुखी, यहां तक कि ऐसे में प्रकृति में शांति का साम्राज्य होता है और वो भी सुखदायी बन जाती है। मानव के विचारों का कितना महत्व है, इस सत्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को चलना है कि संतुलित सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही सफल है। मन साध है, सब कुछ सद है। संतुलित जीवन एक अभ्यास है, साधना है। इसके सदते ही जीवन में खुशी, प्रफुल्लता और सच्चे आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सहज जीने की कला का आधार भी संतुलन में समाया है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य आनंद दीक्षा ग्रहण करते ही उग्र तपस्या में लीन हो गया। उसे तन की भी सुध नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि तन सूखकर कांटा हो गया। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम तो वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तो चलो एक राग तो बजाकर दिखाओ। आनंद बोले, पर ये कैसे बजेगी, इसके तो सभी तार ढीले हैं। बुद्ध बोले, तारों को कस दिया जाए तब बजा लेना। जब दोबारा वीणा आनंद के हाथों में आई तो उलझन में पड़ गए और बोले, अरे यदि वीणा को अब बजाया गया तो इसके सब तार टूट जाएंगे, क्योंकि इनमें तो बहुत अधिक तनाव है। बुद्ध ने कहा, आओ इसे ठीक करते हैं। तारों में तनाव संतुलित हुआ और वीणा पर धुन झंकृत हो गई। जब वादन समाप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध बोले, ये जीवन भी वीणा की तार की तरह है। जैसे वीणा की तार से धुन निकालने के लिए उसे मध्य में रखा जाता है, इसी प्रकार जीवन की वीणा से आनंद, प्रेम, सुख शांति के स्वर तभी झंकृत होते हैं जब वो मध्य में संतुलित हो। संतुलन का अर्थ बराबर बराबर नहीं, पर उतना जिस अनुपात में जो आवश्यक हो। जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में इसकी उपयोगिता है। हमारे मनोभावों को भी इस परिप्रेक्ष्य में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में भावुकता और व्यवहारिकता में संतुलन भी उतना ही वांछनीय है। इस भौतिक युग में वैज्ञानिक यांत्रिकता के प्रभाव से अछूता हमारा मन भी नहीं रहा है, इसलिए भूल करके भी क्षमा मांगना तो दूर, उसका पछतावा भी हम नहीं किया करते। व्यवहारिक बनो, यही आज की मांग है। भावुक होना आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं। भावुकता कमजोरी का पर्याय है, जो स्वयं को हास्यास्पद स्थिति तक पहुंचा सकती है, यदि समय पर सचेत रहकर संतुलित सोच के दायरे में रखकर मनन न किया जाए। जीवन की लहरों के उतार चढ़ाव का सही जायजा लेकर आगे बढ़ोगे तो न सपने टूटने का दर्द होगा और न ही अपेक्षाओं के अनुरूप न पाने की तड़प। सब कुछ हमारे हाथ में है।
1: चिंतन की

चंद्रिका, तभी आप सुन रहे थे जीवन में संतुलन के संबंध में विचार। वाचक स्वर था जयरंधर का। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

रेमन, जो भी प्रभु श्री राम का नाम ले, गुणगान करे, उसके सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है और उसके सामने संसार की मोह माया लोभ सब व्यर्थ हैं। इसलिए रेमन, यदि कुछ पाने की लालसा हो तो सिर्फ मन में राम नाम रूपी धन पाने की लालसा कर, जिसमें असीम सुख है।

अभी आप सुन रहे थे शोभा माथुर के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना। रिमन, प्रभु की भक्ति में आत्मा का परमात्मा से मिलन है और भक्त और भगवान का प्रेमपूर्ण मिलन है, जिनके निस्वार्थ प्रेम में सुख है और अद्भुत आनंद है।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये भक्ति रचना। वंदना कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में ये नात।

इस नाद के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

अयोध्या वासियों को राजा श्री राम ने जो उपदेश दिए उन्हें भक्तजन राम गीता की संज्ञा देते हैं। हनुमान तथा अपने तीनों भाइयों को संत असंत के लक्षण बताकर श्री राम ने नगर निवासियों को नीतिपरक उपदेश दिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। ये साधना का माध्यम और मोक्ष का द्वार होता है। जिसने अपने परलोक की चिंता नहीं की उसे अंततोगत्वा पछताना पड़ता है। वो काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। हे नगरवासियों, ये शरीर विषयों का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय वासना में इस तन का उपयोग करने वाले मूर्खतावश अमृत को विष में बदल देते हैं। माया के वशीभूत प्राणी काल कर्म स्वभाव तथा गुण अवगुणों से घिरा अनंत काल तक भटकता रहता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थे सुरेश वाडकर। FM 100.5 मेगा हाउस पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 3:10 पर न्यू इंडिया समाचार, रात्रि 9:15 पर स्पोर्ट लाइट और रात्रि 10 रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 सुनिएगा कार्यक्रम काव्यांजलि। सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून होगा सुबह 8:30 पर। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम बालमंडल होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों की मुख से रचनाएं बाल गीत और आओ जाने क्रम के अंतर्गत डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ की वार्ता उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। युवा साथी के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज क्रम रहेगा श्रोताओं के अनुरोध मां।

कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 4:01 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे द्वारिका प्रसाद के गाए गढ़वाली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए बुंदेलखंडी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर आप सुन सकते हैं सामुदायिक गान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए मसीही भक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, जिसमें आज की थीम रहेगी रिश्तों की।

0: है आकाशवाणी के साथ। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे सुबह 10:12 पर, दिन में 11:00, 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:25 पर, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर, रात को ही 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यान मंदिरस्य ध्यान कक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां संबोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमंत्री हैदराबादे प्रायः 400.9 crore rupees अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67 100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नव मंत्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धेः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य

0: संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज

आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और साथियों को फिल्म का नाम था दूर कराही। सन 1969 में बनी इस फिल्म के लिए गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत किशोर कुमार का था।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: भूले बिसरी गीत कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दोस्ती। सन 1964 की इस फिल्म के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लेंसडाउन में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए 14,90,000 रुपए की प्रथम किश्त जारी की। और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा, सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिकों और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की पहल से पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी।
1: के अंदर में हमारे रेजिमेंटल सेंटर ने एक बहुत सुंदर कार्य किया है। पर्यावरण के विषय के ऊपर में एक पूर्व सेनानी पर्यावरण पुनर्वास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम है आने वाले समय पे हमारा जो वाटर टेबल है उसको ऊपर लेके आएगा। बड़ी बात ये है कि हम सबको एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर की तरह क्लाइमेट, वेदर, पर्यावरण के चैलेंजेस की तरफ जागना पड़ेगा और पूरे दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए के सबक देना पड़ेगा। और हमारे गढ़वाल राइफल सेंटर ने ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्योंकि पहले जो पानी आता था वो निकल जाता था, अभी ये एक्चुअली वाटर हार्वेस्ट होगा, उसको ठीक से रखेंगे, वाटर टेबल ऊपर आएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि इसको एक उद्यान की तरह बना दिया है।
0: उद्यान भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद भी किया। बच्चों ने राज्यपाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिस पर उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच राज्यपाल ने ऑल वुमेन कैफे का भ्रमण किया और स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार पहाड़ी व पारंपरिक उत्पादों का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार आधारित गतिविधियां महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने राज्य आपदा मोचन विधि के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से प्रत्येक जिले को राहत और बचाव मद में 3 करोड़ रुपए, पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण मद में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से औद्योगिक क्षेत्र तक 4 लेन मार्ग के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए की भी मंजूरी

0: पूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने रुड़की नगर निगम क्षेत्र में सुनहरा मार्ग चौराहे का नाम शहीद चौक रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चमोली के औली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। औली स्थित माउंटेनियरिंग और स्कीइंग संस्थान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग और पर्वतीय युद्ध कौशल के क्षेत्र में देश को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए सांसद निधि से 14,90,000 रुपये की पहली किश्त जारी की है। श्री बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सेना के जवानों के मानसिक और शारीरिक उत्साहवर्धन, मनोरंजन तथा सकारात्मक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांसद ने कहा कि देश की सेवा में समर्पित वीर सैनिकों के कल्याण के लिए उनके प्रयास और संकल्प निरंतर जारी रहेंगे। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और उनका भविष्य अधिक सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों को विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए पंजीकरण केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
2: मेरा नाम विजय भाई नटवरवे पटेल, मैं गुजरात का भरूच जिला से हूँ और हम चारधाम यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो स्वास्थ्य परीक्षण करना था वो भी करवाया और राज्य सरकार तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई है वो सब में हमको बहुत सरलता और बहुत अच्छी तरह से स्टाफ यहाँ के जो लोग हैं उसका भी सहकार बहुत अच्छा मिला है।
3: जयेश पटेल कट रहे थे, चार धाम की यात्रा करने के लिए आए हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, हमको बहुत मजा आया और जल्दी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। राज्य सरकार का खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब धन्यवाद है कि बहुत सारी सारी व्यवस्था की है यहाँ।
4: हम यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए आए हैं उत्तराखंड में, यहाँ हरिद्वार में हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उसका धन्यवाद करते हैं।
5: मैं अशोक भाई पटेल गुजरात से भरूच जिले से हूँ और उत्तराखंड चारधाम यात्रा के जा रहे हैं, हरिद्वार में आए हैं और यहाँ जो सरकार राज्य सरकार की ओर से जो व्यवस्था एकदम बढ़िया है।
0: देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 9,080 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें त्वरित, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति, सौहार्द और संवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।

0: इस दौरान पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, बंगाल में अब शुभेंदु सरकार। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर हिंदुस्तान लिखता है, तमिलनाडु में विजय की ताजपोशी आज। नवोदय टाइम्स की सुर्खी, रेड के बाद पंजाब के निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी द्वारा गिरफ्तार। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान पर दैनिक जागरण लिखता है, कल से पहाड़ों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लैंसडाउन में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लैंसडाउन में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए 14,90,000 रुपये की प्रथम किश्त जारी की। और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा, सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए द्वारिका प्रसाद के गाए गढ़वाली लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: द्वारिका प्रसाद के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को ही थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं,

0: आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, श्री विजय और नौ मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
1: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B,

0: H1B1E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, आज मई माह का दूसरा रविवार और आज का दिन बेहद खास। आज हम मना रहे हैं माँ को समर्पित मदर्स डे। जी हाँ श्रोताओं, ग्रंथों में कहा गया है मातृ देवो भव, यानी माता देवताओं से बढ़कर है और माता का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा माना गया है। माता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बढ़ाकर सपनों को पंख देती है। जी हाँ श्रोताओं, आ जाए अगर जीवन में दुख तो ढाल बनकर सुख की छाया कर देती है। न होता कोई गम जिनके पास माँ होती है। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया में माँ जैसा कोई दूसरा रूप हो ही नहीं सकता और उनके जैसा कोई रिश्ता भी नहीं। इसलिए हमेशा माँ को सम्मान दें, आदर दें। आज मदर्स डे के अवसर पर जगत की सभी माताओं को नमन करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब नजर डालते हैं समाचार पत्रों के पन्नों पर। नए सीडीएस की ताजपोशी से फिर गौरवान्वित हुआ उत्तराखंड। राजा सुब्रमण्य नए सीडीएस। सरकार द्वारा लागू चार श्रम संहिता, सप्ताह में 48 घंटे काम और टाइम के बदले नियम। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में बनेगी नई जेल। सीएम धामी ने विकास योजनाओं को दी 256 करोड़ की स्वीकृति। दून से मसूरी पहुंचने में लग गए 4 घंटे, दिन भर जाम में फंसे रहे पर्यटक। सभी रोड कटिंग कार्य 20 मई तक पूरे किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट का एनआईसी अब बना स्मार्ट कमांड सेंटर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 9,080 वादों को हुआ निस्तारण। और अब मौसम संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आज रविवार है और आज शाम तक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है, जिससे कल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, गर्जन के साथ वर्षा और 4,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। मंगलवार बुधवार को पहाड़ों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने कि आज यानी 10 मई का दिन क्यों है खास। इतिहास

में। सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आज ही के दिन आरंभ हुआ था। 1898 में जमना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ विचित्र नारायण शर्मा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1916 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया था। सन 1929 में भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म हुआ था। सन 1980 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2010 में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेता मैकमोहन का निधन हुआ था और 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला का निधन हुआ था। सन 1981 में पहली बार मुंबई में रात में क्रिकेट मैच खेला गया। सन 1984 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी और आज ही के दिन सन 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान में सहमति हुई थी। श्रोतो, ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी और आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, संगीत के प्रख्यात संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। इनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा मशहूर गायक थे। इनको तो जैसे संगीत विरासत में मिली थी, और ये जब ये मात्र 5 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने पिता से तबला वादन और गायन की शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता चाहते थे कि शिव कुमार प्रथम भारतीय बने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर बजाए, और 13 वर्ष की आयु से इन्होंने संतूर बजाना आरंभ कर दिया और अपने पिता का सपना इन्होंने पूरा किया। इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम 1955 में बम्बई में प्रस्तुत किया, और ये संतूर वादक के साथ साथ श्रोताओं अच्छे गायक भी रहे हैं, जिन्होंने कई इनके एल्बम भी रिलीज हुए हैं। सन 1965 में पहली बार वीर शांताराम की फिल्म झनक झनक पायलबाजी के लिए इन्होंने संगीत दिया था। साथ ही इन्होंने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों में संगीत दिया है, और फिल्मों में स्वतंत्र रूप से इन्होंने जो संगीत के लिए श्री गणेश किया था वो थी फिल्म सिलसिला, और उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर संगीत दिया है। इनकी मुख्य फिल्में रही हैं फासले, चांदनी, लम्हे, डर आदि। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सन 1986 में संगीत नाटक अकादमी से, 1991 में पद्मश्री, और वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम 84 वर्ष की आयु में आज के दिन यानी कि 10 मई 2022 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके संगीत और फिल्म जगत जगत के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। सुनते हैं इनका संगीत बद किया ये गीत। जी हाँ, संगीत शिव हरि का, फिल्म का नाम चांदनी।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों के मशहूर चरित्र अभिनेता फिल्म शोले में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी सांबा। जी हाँ, उनका पूरा नाम है मोहन मकियानी और वे मेक मोहन के नाम से जाने जाते हैं हिंदी फिल्मों में, जिन्होंने 1970 से लेकर 1980 के बीच कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इनका जन्म कराची में 24 अप्रैल 1938 को हुआ था। मोहन क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन ये बंबई चले आए और यहाँ आकर ये थिएटर से जुड़ गए और बॉलीवुड अभिनेता बन गए। इसके लिए बंबई के फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग से इन्होंने अभिनय भी सीखा। मैकमोहन ने फिल्म निर्देशक चेतन आनंद के साथ सहायक के रूप में फिल्मी करियर की शुरुआत की और 1964 में फिल्म हकीकत में इन्होंने अभिनेता के रूप में अभिनय किया और उसके बाद कई फिल्मों में इन्होंने चरित्र भूमिकाएँ निभाई। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी

की पंजाबी, बंगाली, सिंधी जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। साथ ही इनकी प्रसिद्ध फिल्में रही हैं डॉन, कर्ज, सत्य पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना, शोले आदि, और इस तरह इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। पर इनकी अंतिम फिल्म थी अतिथि, तुम कब जाओगी। श्रोताओं, इन्होंने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन के कई धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। पर लंबी बीमारी के बाद श्रोताओं आज ही के दिन 10 मई 2010 को इनका निधन हो गया। आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आइए इनको स्मरण करते हुए सुनते हैं इनकी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आपको ये हमारा नमस्कार देहरादून कार्यक्रम कैसा लगता है, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें अवश्य दें। जी हाँ श्रोताओं, इसके लिए आप हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसमें आप अपने कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7088000731। और अब इसी के साथ कि आज का दिन आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे।

कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं स्वीकार कीजिए नमस्कार कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं दुनिया का सबसे छोटा शब्द माँ है, जिसमें ममता है, अपनापन है, प्यार और दुलार है, जिसे पाकर एक बच्चा दुनिया में बहुत खुश होता है और बहुत कुछ सीखता है अपनी माँ से, जिसकी आंचल में इतनी खुशियाँ हैं कि हर पल हर उस माँ का साया चाहता है। और ऐसा ही ना, तभी तो माँ के इस रिश्ते को हम कभी भुला नहीं सकते। ज़रा भी हमें कुछ होता है तो सिर्फ एक ही शब्द मुँह से निकलता है, ओह माँ। जी हाँ, इस माँ के प्रति बच्चे में के लिए कितना प्यार है इस ममता में। पर एक ऐसा ही रिश्ता जो हमें दिखाई नहीं देता, पर रिश्तों में अटूट प्यार है, स्नेह है, अपनापन है। जी हाँ, वो रिश्ता है आपका और हमारा। और चाहे इस रिश्ते में हम एक दूसरे को ना देख पाएं, लेकिन ऐसे भावनात्मक रिश्ते से हम जुड़ गए हैं कि आप हमें भुला नहीं सकते और हम आपको भूल नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक दूसरे की हम पूरक हैं, तभी तो आप हमारे प्रोग्राम की जान हैं और शान हैं। श्रोताओं, ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि बरसों पुराना है। जब से ये ध्वनि तरंगे आपके मन के आंगन में गूंजने लगी और आप रेडियो के करीब आते चले गए, और ये रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। और ये बात अब आज इतनी महत्वपूर्ण यूँ हो जाती है कि हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आपका और हमारा ये रिश्ता यूँ ही साथ बना रहे, यही हम सब की कामना है। इन रिश्तों में खूबसूरत पल यूँ ही चलते रहें, इन रिश्तों में ये खूबसूरत पल यूँ ही चलते रहे, समय यूँ ही आगे गुजरता रहे, न रहे रिश्तों में दूरियाँ, बस हर पल रिश्तों में मिठास घुली रहे। जी हाँ श्रोताओ, आज की प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास। और आकाशवाणी के साथ आप हमें लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर, आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, आप हमें लिख भेजिए कार्यक्रम में अपने विचार, और जब तक आपके विचार हमें प्राप्त होते हैं तो क्यों नहीं कार्यक्रम में पहले सुन लेते हैं सभी माओं को समर्पित ये कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत। हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। जी हाँ श्रोताओं, आप हमें लिख भेजिए अपने विचार इस थीम से संबंधित। और व्हाट्सएप नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7088000731। और सुबह 10 बजे तक हम आपके साथ हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे लेकर। कार्यक्रम में मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं रुड़की उत्तराखंड से रीना शर्मा लिखती हैं कि मदर्स डे की आपको शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं है। लिखते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उसने माँ को बनाया। जी बिल्कुल, आपने सही लिखा है, धन्यवाद। लेकिन हम आज चर्चा करने जा रहे हैं रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ, तो लिख भेजिए अपने अमूल्य विचार। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू इस्माइल, हंसमुख लाल जिंदल और साथ में इनका पूरा खुश दिल परिवार। जी श्रोताओं, आपने सही लिखा है कि इस साल हम 90 साल पूरे कर रहे हैं आकाशवाणी को लेकर। और रिश्तों की बात करें तो हम माँ बाप के रिश्ते को कभी भूल नहीं सकते, जिसने हमें पैदा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि हम जिंदगी में सब कुछ कर सकें और अपने बच्चों के लिए। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल श्रोता, हम बात करना चाह रहे हैं आज रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। आपको ये हमारा रिश्ता आकाशवाणी के माध्यम से कैसा लगता है, कैसा आप चाहते हैं, लिख भेजिए अपने विचार। व्हाट्सएप नंबर 7088000।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारी आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। जी हाँ बिल्कुल, एक भेजे अपने विचार आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर कि किस प्रकार से रिश्ते हम लोगों की आकाशवाणी के साथ बने हैं। और श्रोताओं व्हाट्सएप नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए 7088000731। इस नंबर पर लिख भेजिए अपने विचार। कार्यक्रम में मैसेज शामिल करते हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है। आप हैं जिला मुरादाबाद गांव दुलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी रीति कौर, साथ में हैं बलबीर सिंह। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। लिखते हैं कि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे भूलना, चलना, खेती करना, दोस्त बनाना, गीत संगीत के साथ साथ मनोरंजन, दूर दूर की खबरें देना, आज हम सब काम कर रहे हैं रेडियो की बदौलत। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको, आप ऐसा महसूस करते हैं। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से रणदीर बागड़, गुरमीत चुकुर, परवीन युगम और विनीत। लिखते हैं कि कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे हमें अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि कार्यक्रम हमें इतने अच्छे लगते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं, साथ ही साथ आज मातृ दिवस की भी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। लिखते हैं कि रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ इस बेहतरीन विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा विषय है। जब रिश्तों की बात आती है तो सर्वप्रथम तो हमारा रिश्ता माँ से बनता है, जिसे ने हमें संसार में जन्म दिया। और आज मातृ दिवस पर रिश्तों की जो मिठास आपने विषय रखा है बहुत ही अच्छा है। इस बेहतरीन अवसर पर हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। हमारा और आकाशवाणी का रिश्ता कई वर्षों से बना है और आगे भी रिश्ता बना रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी आकाशवाणी के रिश्ते को बरकरार रखेंगी। और जब रिश्तों की बात आती है तो आकाशवाणी ने विभिन्न अवसरों पर रिश्तों की गहराई को श्रोताओं के सामने अनेक तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करके रखा है। इस बात को श्रोताओं के सामने रखा है कि अब जैसे भाई बहन का रिश्ता हो, रक्षाबंधन के अवसर पर, मातृ दिवस के अवसर पर, पितृ दिवस के अवसर पर, साथ ही दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है। तो फ्रेंड्स दिवस पर आकाशवाणी हर तरह के प्रोग्राम प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हर तरह के जो कार्यक्रम, हर तरह की जानकारी हमें आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है। आज भी जब आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और डिजिटल युग में आकाशवाणी की मोबाइल ऐप पर जब कार्यक्रम उपलब्ध हो गया है तो केंद्र को सुनकर और भी लाभान्वित होते हैं। आकाशवाणी की हर तरह के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके श्रोताओं को आप जागरूक करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही तो है आकाशवाणी का नारा। क्या बात है धर्मेंद्र छिपा जी और आपके परिवारजन, बहुत सुंदर आपने विस्तार से अपना मैसेज लिखा है। और एक बार पुनः से आपको धन्यवाद। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत की ओर।

कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हम इस बार शमसी नगीना जिला बिजनौर यूपी से लिखते हैं कि आकाशवाणी के अपने 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी की हर गूंज में यादों की एक अलग संसार है, सदियों पुराना रिश्ता सच्चा और बेशुमार है, सुरों की मीठी दोस्ती हर पल का हसीन साथ है, बेमिसाल ये सफर इसमें कोई अलग ही बात है। क्या बात है मिस भाजी, निश्चित ही आपके इस मैसेज में भी कुछ ऐसा खास है, ऐसी बात है जो हमारे सभी श्रोताओं तक ये पहुंच रही है कि कितना प्यार है आकाशवाणी के लिए। और श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि 8 मई 2026 को पूरे देश में वॉकाथोनिया मैराथन का जो आयोजन किया गया और इसमें सभी हमारे श्रोता वार्ताकार और सभी जो आकाशवाणी से जुड़े हैं परोक्ष या अपरोक्ष सभी ने उसमें भाग लिया और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया कि आगे इसी तरह सदियों तक ये रिश्ता यूं ही बना रहेगा। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है, आप हैं अश्विनी यमुनानगर हरियाणा से, लिखते हैं कि पहले तो आपको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही रेडियो परिवार को बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आपको भी बधाइयाँ। आप लिखते हैं कि माँ बाप ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, माँ बाप से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद, आपने सही लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है, सहारनपुर से ही इसरार अहमद, अयान, शबनम, अनस और इनका पूरा परिवार लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखते हैं, इतनी रेडियो भी तो माँ बाप की तरह रिश्ता निभाता है, जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं सिखाते हैं, वैसे ही रेडियो भी हमें नई नई जानकारी देता है, नई तहजीब सिखाता है। दुनिया में रेडियो से रिश्ता हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद यशोतम, बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये रिश्ता यूं ही कायम रहेगा सदियों तक, ऐसा हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: समय 9:30 हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। जी हाँ श्रोता, आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास। आकाशवाणी के साथ लिख भेजे अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वैद्यमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकरम, साथ में इनके बहुत सारे मित्र। आप लिखते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है। लिखते हैं कि रिश्ते तो कई तरीके के होते हैं, भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, और लेकिन सबसे रिश्तों में सबसे श्रेष्ठ होता है माँ का रिश्ता। और हमको बचपन से बड़ा होने तक हमारा साथ निभाती है और हमें सब बात बताती है। और लिखते हैं कि हमारे बीच रही माँ, बस यही कामना है। धन्यवाद श्रोता, आपने सही लिखा है, धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से हैं सुनील चावला, मीना, साक्षी, दिरेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी और साथ में इनके परिवारजन। लिखते हैं कि हर रविवार को सुनते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि हम आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और लिखते हैं कि आज आपने सब्जेक्ट भी अच्छा लिया है। हम भी ये चाहते हैं कि रिश्तों की मिठास रेडियो पर हर समय रहती है। और आज मदर्स डे पर हम लोग कह रहे हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। माँ को हमें बहुत, वो हमें प्यार करती हैं तो हम भी माँ को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नमन करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपके सुंदर से मैसेज के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, एक बार फिर से दोहरा दें श्रोता, आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास। आकाशवाणी के साथ लिख भेजे अपने विचार 7088000731 पर।

श्रोतम कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है विचार आपके गीत हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। जी हाँ श्रोतम, आपका और हमारा रिश्ता जो बिना डोर के बंधा है और इसमें इतनी प्रगाढ़ता है कि हम आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो या सर्दी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि कोरोना महामारी के समय में भी हम आपके साथ रहे, यानी कि हर पल हम आपके साथ हैं कार्यक्रमों को लेकर आकाशवाणी के साथ। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप देहरादून से सुधीर कुमार लिखते हैं कि बदलते वक्त के साथ पारिवारिक संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपसी रिश्ते मजबूत बने रहें इस संबंध में रेडियो के माध्यम से हर कार्यक्रम में बेहतरीन जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर से विचार के लिए। जी हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आपस में दूरियां ना बढ़े बल्कि आपसे रिश्ते मजबूत बने। और पुनः आपको इसे धन्यवाद सुंदर से मैसेज के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

कार्यक्रम अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप मोहल्ला बारादरी महमूद खारापुर से भाई रफल साहिब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और साथ में नगमा नाज मंसूरी। लिखते हैं कि रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, इस तरह से रिश्ते बहुत होते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता रेडियो से बरसों पुराना है। यकीन रेडियो का हमारा रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है। रेडियो में बहुत कुछ सिखाता है, रेडियो से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, रेडियो हमारा मनोरंजन भी करता है और साथ भी हर समय देता है और हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की नॉलेज हमारी बढ़ाता है। रेडियो का रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहेगा और ये रेडियो के साथ हमारा दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। रेडियो का ये

हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे हम सलाम करते हैं। धन्यवाद मोहल्ला बारादरी महमूद खासी भाई रफू साहिब और आपके परिवारजन, बहुत ही अच्छा सुंदर आपका प्यारा सा मैसेज, धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं सुकांत गंबुज देहरादून से, लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी। लेकिन श्रोताओं, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको एक थीम से संबंधित अपना मैसेज लिखना होता है और उसमें अपने विचार लिखने होते हैं कि प्रोग्राम में आपको अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत करने हैं और किस तरह से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, वो अपने विचार लिखने होते हैं। अगर समय रहते आप हमें अपने विचार प्रेषित करते हैं तो निश्चित ही कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं भेरूलाल बागतरिया धाकड़ उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं कि विचार आपके गीत हमारे आकाशवाणी के पहले दशक की प्रसारण में जन जन का लोकप्रिय बन गया है रेडियो और हर वर्ग के लिए आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के संबंध में हम आकाशवाणी से लगातार हर प्रकार की जानकारी सुनते आए हैं और लिखते हैं कि अभी हम चार धाम यात्रा पर हैं और पैदल चढ़ाई करके केदारनाथ जा रहे हैं। हम चारों तरफ हमें बहुत ही सुंदर मनोरणीय दृश्य हमें मिल रहे हैं और बड़े बड़े पहाड़ पेड़ गहरी नदी के अलावा असंख्य श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के साथ हम आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों का भी आनंद उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है श्रोताओं, आज की थीम आपने शायद नहीं सुनी है। आज के प्रोग्राम की थीम है रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। जी बिल्कुल, ये रिश्ता ही तो है जो जिससे आप हमसे जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं रेडियो के माध्यम से। कार्यक्रम में अगला मैसेज है, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये गीत।

ये मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं ब्रजेश कुमार सैनी सहारनपुर आईटीआई से। लिखते हैं कि रिश्ता वो है जो दिल से निभाए जाते हैं, जैसे आप और हम निभाते हैं। क्या बात है ब्रजेश कुमार जी, आपकी छोटी सी पंक्ति है लेकिन पंक्ति में बहुत बड़ी ताकत, और निश्चित ही आपने रिश्तों को बहुत अच्छी परिभाषित किया है। धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी बिहार से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता। लिखते हैं कि आज की थीम बहुत ही प्यारी है, रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के संग। 90 वर्ष को सच में रिश्ता 1986 से मेरा बना। जी बिल्कुल, आपने 1968 से लिखा है, माफ़ कीजिएगा, 1968 से मेरा आकाशवाणी के साथ रिश्ता है। आज मैं 76 वर्ष को पूरा कर लिया है। आकाशवाणी ने हमें अनेकों बेमिसाल दोस्त दिए हैं, रेडियो के माध्यम से लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा है। 2012 में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया की रामगढ़ कैंट रेडियो वीरगंज नेपाल ने भी हमें मान सम्मान दिया है, और मैं भी समय समय पर अपने विचार देते रहता हूँ। आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुंदर से विचार के लिए। बस हमसे आपका रिश्ता यूं ही बना रहे, हमारी यही कामना है। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, शांति निवास लहेगांव रेलवे से अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुराड़े, वंदना आशीष और दीपक कुराड़े लिखते हैं कि सबसे पहले आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर कुराड़े परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जी। बिल्कुल आपको भी शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक है रिश्ते की मिठास आकाशवाणी के साथ। टॉपिक अच्छा है। हर इंसान का सबसे पहले माँ का रिश्ता होता है। हमारी प्यारी प्यारी माँ जो हमें जन्म देती है, वहीं से हमारे रिश्ते शुरू होते हैं। भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य में रेडियो ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमेशा निभाता रहेगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हम यही कहेंगे जब तक जान में जान है हमारा रिश्ता रेडियो से रहा है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। धन्यवाद श्रोताओं आपके सुंदर से विचार के लिए।

श्रोतों कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, पर निभाते हैं हमें। जी बिल्कुल, इसी तरह आप रेडियो से रिश्ता बनाए रखिए। श्रोतों, जिस प्रकार से रिश्तों में कहीं न कहीं हमें स्वार्थ जरूर नजर आते हैं, पर रेडियो के रिश्तों में आपको जरा भी कहीं भी ना तो बनावटीपन है न ही स्वार्थ है, बल्कि निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ता है प्रतिदिन हर पल नए कार्यक्रम लेकर मनोरंजन के साथ। जी हाँ श्रोतों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम

0: में ही संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मंजुला नेगी की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चमोली के औली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG की बैठक में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजा जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल के लेंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण के लिए सांसद निधि से 14,90,000 रुपये की प्रथम किश्त जारी की। और प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं तो अपनाइए ये टिप्स जो आपको मैं आज लम्हे प्रोग्राम में बताने वाला हूं। तो सुनते रहिए आरजे चेतन के साथ आज का लम्हे प्रोग्राम। क्रोध प्रबंधन एंगर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने और सकारात्मक तरीके से समस्या का सामना करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपायों को सीखते हैं। यह हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए ध्यान, स्थिरता और तंत्र मंत्र तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकती है। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा गुस्सा आने से आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारी भी पैदा होती है, जैसे चिंता, अवसाद, सिरदर्द, नकारात्मकता और बीपी की समस्या आदि। यदि आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इसे निजात पाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने जा रहा हूं मैं आपका आरजे चेतन इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, सबसे पहले गहरी

आपका ध्यान भी उस बात से हट जाएगा जिससे आपका गुस्सा और कम हो जाएगा। किसी भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्थी फ्रेंड से बात करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताएं या फिर बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो संभव है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ओके जैसे शब्द या व्याख्यान सभी अच्छे उदाहरण हैं। यदि आपकी किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत कमरे में सोए और लोगों के आसपास रहने से कुछ समय के लिए बचे। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल आपके सभी मांसपेशियों को आराम देता है बल्कि आपको शांत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने के अधिक समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना है और थोड़ा टहल कर आना चाहिए। क्रोध प्रबंधन एंगर मैनेजमेंट एक उपचार नहीं है बल्कि एक चिकित्सा है जिसे आप अपने परामर्शदाता के साथ अपने मुद्दे पर रखते हैं और आप उन्हें कैसे सुधारेंगे इस पर निर्भर करता है। इसमें आपके चिकित्सक के साथ खुली बातचीत की एक श्रृंखला शामिल होती है। नई प्रणाली का पता लगाते हैं जहां आप अपनी निराशा को बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसमें मूल रूप से कई स्तर शामिल है और आपकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर चिकित्सक आपके द्वारा होने वाले स्रोत की संख्या का सुझाव देंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com।

क्रोध को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अभिव्यंजक और स्वीकार्य तरीके से बाहर जाने देना चाहिए। उपचार के सामान्य लक्षण में से एक यह शामिल होगा कि आप चीजों को कैसे हल्के से लेते हैं। आपको एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देखना सिखाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर चीज को मजाकिया अंदाज में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं और उस पर हंस सकते हैं। क्रोध प्रबंधन आपको अपनी पहचान करने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामले में दवाइयों और दवाइयों को शांत प्रभाव में शामिल किया जा सकता है। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो अवसाद निरोधक गोलियां निर्धारित की जा सकती है। एक चिकित्सक का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आप कई वर्षों के अनुभव वाले एक को चुनते हैं और जो आपके मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होगी कि अगर स्थिति इसकी मांग करती है तो आपकी जीवन शैली और आपके परिवार को भी बदलना होगा। गुस्सा बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक भावना है जिस पर आप नियंत्रण खो सकते हैं और आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक ताजा और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है जहां तनाव आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आपके कार्य की प्रकृति आपकी स्थिति का मूल कारण है तो आपको काम में बदलाव देखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम मानते हैं कि यह बहुत छोटी समस्या है, पर यह छोटी छोटी समस्याएं आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ से उखाड़ दीजिए।

0: और एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये स्वर थे अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की। फिल्म का नाम था हम तुम्हारे हैं सनम। गीत था समीर का और संगीत निखिल विनय का था।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: हे क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी।
1: फिल्म धड़कन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्च शिक्षा

0: मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कल गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बीओजी की बैठक ली। डॉ. रावत ने संबंधित अधिकारियों के साथ संस्थान के विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासनिक सुधार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC कार्यालय के नवनवीनीकृत परिसर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि NIC शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा, कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल और सुचारू संचालन में ये व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने कहा कि शासन की विभिन्न डिजिटल सेवाएं अब अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ आम जनता तक पहुंच सकेगी, जिससे इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को मिलेगा। चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल और नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल पंचम वाहिनी के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत नेपाल से लगी सीमा पर आमरा गांव में आयोजित शिविर में 40 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं रियासी में 53 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाएं निःशुल्क वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवस के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों और उच्च माध्यमिक विद्यालय रियासी के छात्र छात्राओं को टीबी के लक्षण, बचाव, उपचार व सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन, साप्ताहिक अवकाश से पहले पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। ITBP व पशुपालन विभाग उत्तराखंड के बीच हुए समझौते के अंतर्गत जिला चंपावत के स्थानीय पशुपालकों ने 36वीं बटालियन ITBP लोहाघाट को 376 किलो जिंदा मुर्गियों की आपूर्ति की गई। इस दौरान प्रभारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. TP यादव व सप्लाई ऑफिसर डॉ. दीपक कुमार ने मुर्गियों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता और मानकों का परीक्षण किया, जिससे निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप ही आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह पहल स्थानीय पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो रही है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो रहा है। साथ ही सरकारी विभागों व सुरक्षा बलों के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाते हुए स्थानीय उत्पादकों को संस्थागत बाजार से जोड़ने के प्रयास जारी रहेंगे, जिससे स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिल सकेगा। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। नीचे सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए बुंदेलखंडी लोकगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला बुंदेलखंडी लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए बुंदेलखंडी लोकगीत।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
3: जो जस
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए आपकी पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

आप सभी श्रोताओं को माधुरी दानुपुंडीर का प्यार भरा नमस्कार और सभी श्रोताओं को मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, घुटनों से रेंगते रेंगते जब पैरों पर खड़ा हो गया, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हो गया। काला टीका, दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा ही मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार तेरा कैसा है। श्रोताओं, इस प्यारे से पंक्तियों के साथ सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मातृ दिवस कोई चंद पंक्तियों में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, व्याख्यान नहीं कर सकते। एक माँ का कर्ज हम जिंदगी भर अदा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी माँ को समर्पित कई सारे गीतों की फरमाइश की है। तो चलिए ले लेते हैं उनकी फरमाइश। और जिन श्रोताओं को हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, उन श्रोताओं को हम अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं। और जल्दी से नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7088000731। तो श्रोताओं, सबसे पहले हमें फरमाइश भेजी है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश। ये इन्होंने मध्य प्रदेश से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। और अगली फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है, ये फरमाइश हमें भेजी है लाल चरोत्रा से सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद, ये गांव पंजाब से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। और अगली फरमाइश हमें भेजी है हैदराबाद से बी एन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार, ये भी अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और केशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से। तो चलिए इनकी पसंद का गीत आप सभी तक पहुंचाते हैं फिल्म राजा और रंग से, क्योंकि आज मातृ दिवस है तो आप सभी को डेडिकेटेड आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था।
1: Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for national policies implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. He was addressing BJP cadres in Bengaluru.
0: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Karagam, TBK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967 who does not come either from DMK or AIADMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member House. According to a Lok Bhavan press release, the Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. At the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Hoard defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended tied at 4-all following 4 sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. And that is the end of this news bulletin.
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी के लेंसडाउन में पूर्व सैनिकों और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC कार्यालय के नवीनीकृत परिसर का किया शुभारंभ। कहा, NIC शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानिश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत आमरा गांव और रियासी गांव में ग्रामीणों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर आज मध्य प्रदेश के सीहोर

0: जिले के भैरुंडा में रजत जयंती समारोह का किया जाएगा आयोजन। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:12 हो रहे हैं। प्रस्तुत है असमी सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
2: आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
3: माती रे।
2: ए माती रे मोरो मोते,
3: मोरो मोते।
2: माती के सुमीलो,
3: सुमीलो।
2: माती के सुमीलो हो गया ना यहाँ तक। आगे लिखो। ए माती ते,
3: ए माती ते,
2: ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीबॉन सोबी, जीबॉन
3: सोबी।
2: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीबॉन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ह की तरह से, तो आका ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आकाहार आकाहार लिखो। दूर आकाहार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना, ह खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
3: लागे लागे।
2: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, मातिर बुकुत। मोनोर मालोती, बूटोलो मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे,
3: कोरोनी रे।
2: हुरोर हुरोर पापोरी रे,

0: पापोरी रे आजी।
1: आजी
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना?
1: जी हाँ।
0: हुंदौर
1: हुंदौर
0: खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: खुदीनौर नहीं खनी ख खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ आगे ना
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

있으면 어려우니까. 자, 시작을 해볼게요. 사라가네, 1, 2, 3, 4.

0: अभी आप सुन रहे थे असमी सामुदायिक गान शिक्षा पाठ FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला बाल मंडल।
1: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ। वो भी
2: बच्चों संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

जो लेकर आपका अपना कार्यक्रम बाल मंडल। आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी अपनी किरण दीदी। बच्चों, माँ के प्यार और त्याग और ममता को समर्पित एक सुंदर दिन, मदर्स डे। बच्चों, माँ वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार करती है, हमारी हर खुशी में मुस्कुराती है और हर मुश्किल में हमारा साथ देती है, हमारा सहारा बनती है। माँ की ममता दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है और तोहफा है, जो कभी खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए बच्चों, आज के दिन हम सभी की तरफ से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। ईश्वर हमारी सभी माताओं को स्वस्थ, खुशहाल और लंबी आयु प्रदान करे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कई बार अपना काम ये कहकर टाल देते हैं कि माँ कल कर लेंगे, लेकिन ये छोटी सी आदत ही आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है। जो समय एक बार निकल जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर हम अपनी पढ़ाई, होमवर्क या अपनी जरूरी काम समय पर नहीं करते हैं, तो बाद में हमें घबराहट और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम समय रहते अपना काम पूरा नहीं करेंगे, तो एग्जाम टाइम पे हमें पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा, जिससे हमारी परीक्षा में अंक भी कम आएंगे। और वहीं आपका दोस्त, जिसने सारे काम टाइम पे किए हैं और साथ ही उसे लर्न भी कर रहा है, तो उसके मार्क्स ऑब्वियस आपसे ज्यादा आएंगे। इसीलिए बच्चों कहते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए बच्चों, परिश्रम के साथ साथ समय ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, और क्योंकि आज हम मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा प्यारा सा गीत और फिर वापस आते हैं और बात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद आज बहुत सारे जो बच्चे हैं उनसे कि वो आज आप लोगों को क्या सुनाने वाले हैं। तो जल्दी से गाना एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
2: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
1: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
2: व्हाट्सएप 7895372936।
1: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
3: बच्चों, एक बार फिर से कार्यक्रम बाल मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अब शुरू करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है और आज आप हमें क्या सुनाने वाले हो?
4: मेरा नाम आशिका पंत है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती, मुझे पढ़ाती मुझे खिलाती, पहले खाना मुझे खिलाती, सच बोलना मुझे सिखाती, सच्ची राह मुझे दिखाती। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
3: अब बच्चों, चलिए दूसरे बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं वो आप सभी को क्या सुनाने वाला है। और उसने अपनी मदर के लिए एक बहुत अच्छा कार्ड भी बनाया है जो मुझे दिखाने के लिए लाया, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है और उस कार्ड को उसने एक रैप बॉक्स की तरह पैक किया हुआ है, जैसे हम बॉक्स ओपन करते हुए सरप्राइज निकलता ना, इस तरह से बना के लाया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बट वो उसने अपनी मदर के लिए सरप्राइज रखा है तो हम उसे ओपन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी मदर्स को कुछ ना कुछ तो दे ही रहे होंगे, तो उनके साथ आज का दिन एंजॉय करिए। और चलिए सुनते हैं, अब हम जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं उनसे जानते हैं कि वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं। तो बच्चे, आपका नाम क्या है?

0: मेरा नाम दैव्य है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं अपनी माँ के लिए कुछ शब्द कहने चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अच्छे काम सिखाए हैं, मेरी मम्मा ने मुझे सच बोलना सिखाया तथा मुझे अच्छी मेहनत सिखाए और मुझे ये भी कहा कि अपने बड़ों से अच्छे से बात करें और अपने टीचर्स के साथ अच्छे से कहें। अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है माँ। माँ ममता की प्यारी छाया, जीवन में खुशियों की माया, उसकी आंचल की ठंडी छाव दूर करे हर दुख और घाव। जब भी हम घबराते हैं माँ ही याद हमें आती है, उसकी मीठी प्यारे बातें भर देती है नई सौगातें। खुद भूखी रह जाती अक्सर हमको खिलाती, प्यासे बढ़ हर मुश्किल के साथ निभाए, सही राह पर चलना सिखाए। ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है माँ, माँ से ही रोशन संसार, उसके चरणों में ही जन्नत सारी, माँ सबसे प्यारी सबसे न्यारी। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। हैप्पी मदर्स डे।
1: बच्चे अब चलिए एक और बच्ची से बात करते हैं जो कि छोटी सी है, प्यारी सी है और बहुत खिलखिला के हंस रही है और उसने अपनी मम्मा को गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया है, तो वो आपको क्या सुनाने वाली है चलिए वो भी हम जानते हैं।
2: मेरा नाम मायरा चौधरी है, मैं कक्षा 2

0: मुझ में सहज तुमसे आता तुमसे ही विश्वास। थैंक यू।
1: बहुत अच्छा बच्चे, चलिए अब दूसरे बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं।
2: मेरा नाम आन्या हरजाई है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मातृ दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास सबसे प्यारा रिश्ता। उस माँ को सम्मानित करने के लिए मई के दूसरे रविवार को विशेष दिवस मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग कहानी है। मदर्स डे ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जॉर्वेस द्वारा समस्त माताओं और उनके गौरव में मातृत्व के लिए तथा विशेष रूप से पारिवारिक और उनके परस्पर संबंधों के सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था। कुछ विद्वानों का दावा है कि माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा का रिवाज पुराने ग्रीस से आरंभ हुआ है। थाईलैंड में मातृ दिवस थाईलैंड की रानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में इसे कस्तूरबा गांधी के सम्मान में मनाए जाने की परंपरा है। माँ वह धागा है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। माँ का प्यार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे तो हर दिन माँ के समर्पित होता है, परंतु यह दिन 10 मई माँ के प्रति प्रेम और उनके निस्वार्थ बलिदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस मातृ दिवस पर मैं उस महिला को नमन करती जो मेरी सबसे बड़ी ताकत और आदर्श रही है। माँ के लिए दो शब्द, दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब वह कहाँ हार मानती है। सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: बच्चों अब एक प्यारी सी बच्ची जो कि बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, तो चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाली है। और वो इतनी प्यारी सी है ना, क्यूट सी, दो चोटी बना के आई है, कर्ली हेयर्स हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। चलिए उससे बात करते हैं, जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाली है।
3: Good morning everyone. Today, me Kritika Chakmula standing here to speak a poem in the behalf of Mother's Day. Now, I'm starting my poem. You held me up, you let me fall. Coach me each time, loved me through all. No words enough, but still I will say, love you ma, happy Mother's Day. Thank you and have a wonderful day ahead.
1: बहुत अच्छी कृतिका। अब इन सभी बच्चों में थोड़ी सी बड़ी बच्ची बैठी है, तो चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाली है। और वो काफी सिंसियर भी लग रही है, शांत है, बैठी हुई है, देख रही है सबको और देख रही है कि मेरी बारी कब आ

0: तो चलिए अब उससे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज आपको क्या सुनाने वाली है।
1: नमस्कार, मेरा नाम प्रमीला पांडे है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो मैं मदर्स डे के उपलक्ष में कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। मेरी माँ, जो शब्द तुम्हें परिभाषित कर दे, वो शब्द कहाँ से लाऊं? कैसे माँ तुझे दो शब्दों में लिख पाऊं? तेरा व्याख्यान कर सकूं, वो ओज कहाँ से लाऊं? कैसे माँ तुझे दो शब्दों में लिख पाऊं? माँ होंठों पर हंसी के लिए वो सारे दिन मुस्कुराती है, अंदर क्या है उसके वो किसी को नहीं बताती है। कहने को तो बहुत से अपने हैं उसके पास, पर मुश्किलों में खुद को वो अकेला ही पाती है। घिरी वो लाखों परेशानियों से, पर जब भी कोई हाल पूछे तो अक्सर सही बताती है। उसके शांत चेहरे के पीछे ना जाने वो कितना शोर छुपाती है। हारती तो रोज है वो, पर हिम्मत कर फिर खड़ी हो जाती है। करती है सबकी परवाह वो, पर जब बात खुद की हो तो पीछे हट जाती है। सबकी खुशी देखते देखते वो हमेशा खुद को भूल जाती है। वो माँ है ना, माँ होने का फर्ज निभाती है। और एक बार और मैं कहना चाहूंगी, माँ की तरह कोई और ख्याल रखे, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी पोयम या कहें लाइंस जो कि दिल को छूने वाली है प्रमिला ने सुनाई माँ को। सही कहा उसने कि हम बयां नहीं कर सकते कि माँ की हमारी जिंदगी में क्या जगह है और माँ के जैसा ख्याल कोई भी नहीं रह सकता। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी को माँ का प्यार मिल रहा है और आपकी माँ आपके हर पल में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर खड़ी हुई है। तो आज के दिन सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। बच्चों, इतनी सारे बच्चों ने अपनी आज मम्मा को ग्रैंड विशेस दी हैं और अब इन्हीं में दो यहाँ पे बच्चे ना फ्रेंड्स बन गए अच्छे से। तो वो दोनों कह रहे हैं कि हम एक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं और वो सॉन्ग बंगाली में सुनाना चाहते हैं और दुर्गा माँ के लिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि वो भी हमारी माँ है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि हमने अपनी माँ के साथ जो हमारी माता रानी उनको भी याद किया है क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि की माँ है। तो चलिए उनसे भी ये गाना सुनते हैं और इंजॉय करते हैं और हम सभी चाहेंगे कि हमारी पूरी सृष्टि की जो माँ है दुर्गा माँ उनकी ब्लेसिंग्स भी हम सब पर हमेशा बनी रहें।
2: बजा का सुर बजा उल्लू दिया शंख बजा बजा सुर पने हमारे लोग बाजे पूजो पूजो।

0: वेलकम बच्चे, बहुत अच्छा गाना सुना आपने बंगाली।
1: तो बच्चों ये थी हमारे आज की बाल मंडल की प्रस्तुतियाँ और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत सारी विशेष अपनी मदर्स को दी हैं। और अब बच्चों मैं जानती हूँ कि आप सबको गर्मियों की छुट्टियों का बहुत इंतजार रहता है और बस इसी महीने कुछ दिन और हैं, उसके बाद आप लोग की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और सभी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे, कहीं घूमने जाने का, कहीं नानी दादी के यहाँ जाने का, कोई कहीं बाहर एंजॉय करने का। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और देखिए जानिए अपने उत्तराखंड को कि वो कितना खूबसूरत है। तो चलिए इसी विषय में आज हम बात कर रहे हैं कि आइए जाने क्रम में उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। और आज की हमारी वार्ताकार हैं डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पे ले चलेंगे जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं, ठंडी ठंडी हवा है और बहती हुई नदियां हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। यह भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र नदियों, मंदिरों और रोमांचक स्थानों के लिए जाना जाता है। बच्चों कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, बादल आपके बहुत करीब हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। यही है उत्तराखंड की खासियत। यहाँ हर मौसम में कुछ ना कुछ खास देखने को मिलता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है, इसलिए लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। अब हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं नैनीताल से। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है।

सकता है। बच्चों, नैनीताल उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यह चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ की सबसे बड़ी खास पहचान है इसकी मनमोहक नैनी झील। इस झील का आकार आंख जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम नैनी पड़ा। नैनीताल का वातावरण साल भर ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों में जब मैदानों में बहुत गर्मी होती है, तब लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं। ठंडी हवा, साफ पानी और शांत वातावरण बच्चों और बड़ों को सभी को अच्छा लगता है। नैनीताल की मॉल रोड भी बहुत आकर्षक है। यहाँ कई दुकानें, खिलौने, गर्म कपड़े और स्वादिष्ट खाने की चीजें मिलती हैं। शाम के समय यहाँ घूमना और खरीदारी करना बहुत आनंददायक होता है। इसके अलावा नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप जैसी जगह भी हैं, जहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को अद्भुत दृश्य देखा जाता है। यहाँ का चिड़ियाघर भी खास है, जहाँ आप कई दुर्लभ जानवर देख सकते हैं। बच्चों, मसूरी उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह शहर देहरादून के पास ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और सुहावना रहता है, इसलिए लोग यहाँ गर्मियों में घूमने के लिए आते हैं। मसूरी की सबसे खास बात है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। चारों ओर से हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों के साथ इसमें कई जादुई दुनिया जैसा बना देता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बादल आपके बहुत करीब आ गए हों, आप इन्हें छू सकते हैं। मसूरी में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगह हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय है कैंपटी फॉल, जहां ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बहुत सुंदर दिखाई देता है और बच्चे यहाँ पानी में खेलकर खूब आनंद लेते हैं। इसके अलावा गन हिल भी एक मशहूर स्थान है, जहाँ से पूरे मसूरी शहर और दूर दूर तक फैले पहाड़ों का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो मसूरी आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और जंगलों में सैर का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ की ताजी हवा और शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। मसूरी हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जब भी हम यहाँ जाएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं और पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बच्चों, क्या आप भी पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर करना चाहेंगे? अब चलते हैं ऋषिकेश की ओर, जो योग और अध्यात्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बच्चों, यहाँ एक खास पुल है जिसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है। यह पुल नदी के ऊपर बना हुआ है और जब आप इस पर चलते हैं तो हल्का हल्का हिलता है, जिससे आपको मजा भी आता है और थोड़ा रोमांच भी महसूस होता है। ऋषिकेश में बहने वाली गंगा नदी बहुत ही साफ और सुंदर होती है। यहाँ लोग ध्यान और योग करते हैं, जिससे मन शांत होता है। अब चलते हैं हम हरिद्वार की ओर, जो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ बहती है गंगा नदी। बच्चों, हर शाम यहाँ गंगा आरती होती है और इस पर हजारों दीपक जलाए जाते हैं और लोग भजन गाते हैं। पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। बच्चों, केदारनाथ धाम भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है और देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है और चार धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर इतना खास क्यों है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से भटके पहाड़, ठंडी हवा और शांत वातावरण इसे एक रहस्यमय और पवित्र स्थान बनाते हैं। यहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। बच्चों, केदारनाथ तक पहुँचने के लिए आपको पहले गौरीकुंड जाना होता है। यहाँ से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ यात्रा पहाड़ों, नदियों और खूबसूरत घाटियों के बीच होकर गुजरती है। रास्ते में आपके घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा भी मिलती है। बच्चों, उत्तरकाशी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बहुत ही खास शहर है। इसका नाम उत्तरकाशी इसलिए पड़ा क्योंकि यह काशी यानी वाराणसी की तरह एक पवित्र स्थान माना जाता है। बस यह उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे बहुत खास बनाते हैं। उत्तरकाशी के बीचों बीच बहती है पवित्र भागीरथी नदी। यही नदी आगे जाकर गंगा नदी का रूप लेती है। बच्चों, इस नदी का पानी बहुत ठंडा और साफ होता है और इसके किनारे बैठकर आपको बहुत शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि त्रिशूल बहुत प्राचीन है यहाँ पर और इसे हिलाना लगभग असंभव है। लोग यहाँ आकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हैं। बच्चों, अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना, नई नई जगहों को खोज करना और एडवेंचर करना पसंद है तो उत्तरकाशी आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ से कई प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं गंगोत्री की, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री वहाँ स्थान जहाँ पे गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर मंदिर बहुत पवित्र हैं और हर हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। गंगोत्री के पास भी एक अद्भुत स्थान है गौमुख। बच्चों, यह एक ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा नदी का पानी निकलता है। यह जगह देखने में बहुत ही रोमांचक और सुंदर होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। दूसरा धाम है बद्रीनाथ मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ अलकनंदा नदी बहती है और मंदिर के पास गर्म पानी का कुंड भी है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। बच्चों, यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ठंडी जगह पर भी गर्म

0: पानी मिलता है। इसके अलावा दो और धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है और यमुनोत्री से यमुना नदी की। दोनों स्थान भी बहुत पवित्र हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। अब हम चलते हैं एक रोमांचक जगह की ओर, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों, यह एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ कई तरह के जानवर रहते हैं। यहाँ आप बाघ, हाथी, हिरण और तरह तरह के पक्षी देख सकते हैं। जंगल में घूमने के लिए जीप सफारी होती है, जिसमें बैठकर आप पूरे जंगल का आनंद ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जंगल में हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी जगह, जिसका नाम है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपको हर रंग के फूल देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंगों से धरती को सजा दिया हो। यहाँ की हवा बहुत ताजी होती है और वातावरण भी बहुत शांत होता है। अब बच्चों, हम बात करते हैं चोपता की, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यह जगह बहुत शांत है, जहाँ आप प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं। यहाँ से आप ऊंचे पहाड़ों को देख सकते हैं और ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड की यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें बताती है कि प्रकृति कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण है। हमें पेड़ों, नदियों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। जब भी हम किसी पर्यटन स्थल पर जाएं, तो वहां साफ सफाई का ध्यान रखें और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। बच्चों, लैंसडाउन देवभूमि उत्तराखंड में स्थित एक छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। यह आपको शांति, ताजी हवा और प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। लैंसडाउन का नाम एक अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था। यह स्थान पहले ब्रिटिश शासन के समय एक सैन्य छावनी के रूप में विकसित किया गया था। आज भी यहाँ गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय स्थित है, जो भारतीय सेना की एक बहादुर रेजिमेंट है। लैंसडाउन में एक और खास है गढ़वाली संग्रहालय। यहाँ आपको गढ़वाल राइफल्स के इतिहास, उनके वीर सैनिकों और उनके साहस के बारे में जानने का मौका मिलता है। बच्चों, यहाँ आकर आपको देशभक्ति की भावना भी महसूस होगी। उत्तराखंड सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि हमें शांति, खुशी और नई ऊर्जा देता है। यहाँ आकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। तो बच्चों, अगली बार आप जब छुट्टियों की योजना बनाएं, तो अपने माता पिता से कहिएगा कि आपको उत्तराखंड घुमाने ले चलें। यकीन मानिए, यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्रा होगी।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ से आइए जाने क्रम में उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल इस विषय पर वार्ता। और आशा करते हैं आपने इससे बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी और अब आपको प्लानिंग करने में और हेल्प भी मिलेगी। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए खूब सारी तैयारियां कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का बाल मंडल कार्यक्रम। और इसी तरह अगर आप भी हमारे स्टूडियो में आकर हमें अपनी प्रस्तुतियां शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम बाल मंडल में हार्दिक स्वागत है। हम इसकी रिकॉर्डिंग हर शनिवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक करते हैं और जिसका प्रसारण हम हर रविवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच कार्यक्रम बाल मंडल में करते हैं। तो आप अपनी प्रस्तुति लेकर हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, अब घड़ी इशारा कर रही है कि समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। तो अपनी किरण दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
2: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालमंडल एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
5: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
4: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लू

0: से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:05 हो रहे हैं। आइए अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और देहरादून में पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की।

0: संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। बागेश्वर जिले की सुंदरडुंगा घाटी में 15,092 फीट ऊंचे कनकाटा दर्रा को युवा ट्रैकर्स की टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच 3 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कनकाटा दर्रा को सुंदरडुंगा घाटी के सबसे कठिन और रोमांचक ट्रैकों में गिना जाता है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते, बर्फ से ढके ट्रैक और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद टीम ने साहस, धैर्य और मजबूत टीम भावना का परिचय दिया। ट्रैक के दौरान कई बार खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन टीम के सदस्यों ने संयम और आपसी तालमेल के साथ हर बाधा को पार किया। माउंटेन गाइड और अभियान दल के लीडर जीतू दानो ने कहा कि इस तरह की साहसिक अभियान युवाओं को एडवेंचर टूरिज्म की ओर आकर्षित करते हैं, साथ ही इससे बागेश्वर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है।
1: कनकाटा पास ट्रैक था ये, टोटल 4 लोग थे इसमें, 3 लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुखराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें एक एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट थे, प्रकृति के प्रेमी थे, वो चंदन नयाल जी थे नैनीताल से, और एक मोहन सिंह डानू थे वाछम से, और एक मैं था जो लीड कर रहा था। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था, और इसको हमें पूरा करने में जातुली 3 दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कंप्लीट हो गया था ये हमारा। और इस पर थोड़ा सा हमें रिसर्च भी करना था। अभी देखो तो क्लाइमेट चेंज की कोई बात नहीं कर रहा है, इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है पहाड़ों में। आने वाले समय में अगर हम अवेयर नहीं हुए, पूरे सारे लोग, मतलब विभाग से लेकर हमारे लोकल लोगों से लेकर सभी लोग अगर अवेयर नहीं हुए, तो हमारे पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इस टाइम पर जितना हैवी स्नोफॉल वहाँ पर हुआ है, जो स्नो हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो पहले ऐसे हुआ नहीं करता था।
0: मुख्यमंत्री के निर्देशों पर संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्र में विगत 2 दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 67 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा सभी वाहनों को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 35 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा थाने लाया गया, जिन्हें थाने पर सख्त हिदायत देते हुए उनके पुलिस एक्ट में चालान किए गए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर एमवी एक्ट और पारिवारिक मामलों, प्री लिटिगेशन और बैंकों से लिए गए ऋण के मामले सुलझाए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों को कोर्ट फीस वापसी की सुविधा भी प्रदान की गई। वहीं विभिन्न बैंकों के ऋण ओर से ऋण संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए स्टॉल लगाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे बेहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं।
3: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है नालसा के तत्वाधान में। इसमें शमनीय अपराध, एमवी एक्ट, पारिवारिक मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। त्वरित न्याय के लिए ही लोक अदालत लगाई गई है। सिविल वादों के में अगर समझौता होता है, ये बेनिफिट मिल सकता है पार्टी को कि कोर्ट फीस इसमें वापस हो जाती है। साथ साथ हमने प्री लिटिगेशन मामले, जैसे बैंक के लोन के संबंधित, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग संबंधित, हमने प्री लिटिगेशन मामले लगाए गए हैं। विभिन्न विभिन्न बैंक द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया है। काफी नोटिसेस, करीब 2-3 हज़ार के करीब नोटिसेस मेरे साइन से गए हैं और लोगों का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है।
0: विशेष प्रांतों, जनपदों से देहरादून शहर होते हुए मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता आदि स्थानों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है, जिसमें शहर में यातायात संचालन को प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित करते हुए वहां पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। पुलिस द्वारा लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान का असर वीकेंड की शुरुआत में ही दिखा है, जहां बाहरी प्रदेशों, जनपदों से भारी

0: संख्या में पर्यटक वाहनों के जनपद में आने के बाद भी जनपद में कहीं भी यातायात के दबाव अथवा जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट स्थित झीमार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लांट को सील कर दिया है। संयुक्त निरीक्षण टीम को जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिली, जिसके बाद मौके पर ही कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से झीमार क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर हॉटमिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने प्लांट से पर्यावरण और सुरक्षा को खतरा बताते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचने के बाद प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि प्लांट संचालक ने बिना आवश्यक अनुमति के संचालन शुरू कर दिया था। खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि कई नियमों के उल्लंघन और गंभीर खामियों को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्लांट को सील कर दिया है।
1: मौका स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा सीटीओ और सीडीए की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब को इसमें रिपोर्ट दी जाएगी। है खनन विभाग है और आपका लोक निर्माण विभाग है और आपका पॉल्यूशन बोर्ड आई है और जो भी विस्तृत इसकी रिपोर्ट होगी वह एसडीएम साहब को दी जाएगी। तब तक प्लांट बंद रहेगा और प्लांट सीज करके सुपुर्दी की हमने दी है और अग्रेतर कार्रवाई तक इसमें नहीं होती है तो न प्लांट चला जाएगा नहीं खुड़बुट यहाँ पे किया।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और देहरादून में पुलिस द्वारा वीकेंड पर विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गीत फिल्म राजपूत से। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही संपन्न होता है।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सलमान खान की युगल स्वर में ये गीत फिल्म हेलो ब्रदर से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत श्रेया घोषाल और जावेद के स्वर में। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म बरसात से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत अंकित तिवारी के स्वर में, फिल्म का नाम विलेन।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP legislature party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत

0: At 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग

0: मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
5: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

0: और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ दसवें, बेंगलुरु चौथे और मुंबई नौवें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। आज के इस सेगमेंट में साथियों हम बात करेंगे परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर और वर्तमान में कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के साहस और जज्बे की। साथियों कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र पाने वाले सबसे पहले युवा सैनिक हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे कैप्टन योगेंद्र के मन में बचपन से ही देश सेवा का जज्बा था और इसलिए बहुत कम उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया और उन्हें इंडियन आर्मी की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल किया गया। तो उनके बारे में और भी जानेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये पहला गीत।

साथियों, कैप्टन योगेंद्र की वीर गाथा शुरू हुई साल 1999 में, जब कारगिल युद्ध हुआ था। मई 1999 में उन्हें अचानक निर्देश मिले कि द्रास क्षेत्र की तरफ बढ़ना है। उस समय सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह केवल 19 वर्ष के थे। रास्ता बहुत कठिन था, खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना था, लेकिन बावजूद इसके टुकड़ी चलती रही। ऊपर दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा था, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे।

द्रास की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल तक पहुंचने के दौरान प्लाटून कमांडर और दो अन्य शहीद हो गए। दुश्मनों के ऊपर से लगातार गोलियां चल रही थी और इसी दौरान सूबेदार मेजर योगेंद्र के गले और कंधे में भी 3 गोलियां लगी थी। बावजूद इसके योगेंद्र जी शेष 60 फिट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंच गए और दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया और अंततः अपने प्लाटून के साथ टाइगर हिल पर विजय पताका फहराया।

साथियों, योगेंद्र सिंह यादव आज देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। देश सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है और आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी गोलियां लगी थी, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया।

साथियों, 1999 में कारगिल युद्ध में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को 17 गोलियां लगी थी और बावजूद इसके उन्होंने अकेले ही अनेक घुसपैठियों को मार गिराया, जिसके लिए उन्हें उनके अदम्य साहस के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1922 में कैप्टन योगेंद्र यादव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स लिखी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर कारगिल युद्ध की कहानी लिखी। किताब में उन्होंने कारगिल युद्ध के वीर जवानों की शौर्य गाथा के बारे में जिक्र किया है, साथ ही जवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसके बारे में भी उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। उन्होंने इस किताब को देशवासियों को समर्पित किया है। तो आज कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की का जन्मदिन है, तो हम सभी आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

0: परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके।
1: इसी देशभक्ति गीत के साथ सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। जिसकी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज़ इंडिया हेडलाइंस।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अब वक्त हो चला है गाने नए तराने का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर में। आइए अब सुनते हैं फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से ये खूबसूरत गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी सी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म बागी 2 से अंकित तिवारी की आवाज़ में।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म जब हैरी मेट सेजल से आवाज है अरिजीत सिंह की।

पलक मुच्छल और माफ कीजिएगा के और हेमा सरदेसाई की आवाज में अभी आप ये सुन रहे थे गीत फिल्म जमीन से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आशिकी 2 से पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की युगल स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लखविंदर वडाले और नीति मोहन के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म कोई जाने ना से। आइए सुनते हैं फिल्म जब तक है जहां से ये गीत सोफिया और नीति मोहन के युगल स्वर में।

0: इसी गीत के साथ गाने नए तराने का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने अपने 2 दिवसीय लैंसडाउन प्रवास के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सैनिक सम्मेलन में शामिल होकर सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और जिले में संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा भी की। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना का केंद्रित होगा। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ब्रिजलाल सहित सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सदस्यों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और मास्टर प्लान कार्यों की सराहना की। बागेश्वर जिले की सुंदरडुंगा घाटी में स्थित कनकाटा दर्रा को युवा ट्रैकर्स की एक टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच महज 3 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। चमोली के सीमांत नीति क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मलारी पापड़ी धार के पास भूस्खलन होने से बंद हो गई है। सड़क बंद होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को दी गई, जिसके बाद संबंधित विभाग और एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में एक ही दिन में राष्ट्रीय लोक अदालत में 980 मामलों का निस्तारण किया गया है और अल्मोड़ा जिले के सल्ट स्थित झिमार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लांट को सील कर दिया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुमत सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुमत सारंग। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं एक कलाकार।

श्रोताओं, आप सभी को माधुरी दानू पुंडीर का प्यार भरा नमस्कार। एक कलाकार के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक कलाकार में लाए हैं गीतकार कैफी आजमी के गीतों को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैफी आजमी के बारे में कि कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मिजवा गाँव में हुआ था। उनका असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने शायरी का शौक था। कहा जाता है कि मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिख दी थी। उनकी शायरी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाई और इंसानियत का दर्द भी दिखाई देता है। वे एक प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की उन्होंने कोशिश की। उनका मानना था कि कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का भी एक माध्यम है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा हुआ ये पहला गीत।

श्रोताओं, कैफे आज़मी ने हिंदी फिल्मों को कई यादगार गीत दिए। उन्होंने कागज के फूल, हकीकत, हीर रांझा, गरम हवा, आखिरी खत, अर्थ जैसे कई फिल्मों में अपने शब्दों का जादू बिखेरा। फिल्म हीर रांझा की खास बात ये थी कि पूरी फिल्म के संवाद कविता के रूप में लिखे गए थे। ये कमाल कैफे आज़मी ने ही किया था। उनके गीतों में गहराई, दर्द और भावनाओं की सच्चाई दिखाई देती थी। उनका लिखा हर गीत दिल को छू जाता था।

श्रोताओं, कैफे आज़मी सिर्फ गीतकार नहीं थे बल्कि समाज की आवाज़ भी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, गरीबों की परेशानियां और सामाजिक असमानताओं पर खुलकर लिखा था। उनकी मशहूर पंक्तियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। उनकी लेखनी में समाज को बदलने की ताकत थी। उन्होंने अपने गांव मिजवा के विकास के लिए भी बहुत काम किया। शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए।

श्रोताओं, 10 मई 2002 को कैफी आजमी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कविताएं हमें मोहब्बत, बराबरी और इंसानियत का संदेश देती है। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो दिल में एक अलग एहसास जाग उठता है। उनकी कुछ खूबसूरत पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई जमी नया आसमां नहीं मिलता। सचमुच कैफे आजमी जैसे शख्सियतों ने सदियों में जन्म लेते हैं। ये कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर बढ़ते हैं।

श्रोताओं, कैफे आजमी का साहित्य और सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। उनकी शायरी आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। उनकी भाषा सरल थी लेकिन भावनाएं बहुत गहरी।

श्रोताओं, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम महान शायर और गीतकार कैफी आजमी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने अपनी कलम से सिर्फ गीत और गजलें ही नहीं लिखी, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और समानता का संदेश भी दिया है। उनकी रचनाएं आज भी हमें सोचने, महसूस करने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। कैफी आजमी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनकी शायरी और उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक कलाकार फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसेफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला

0: दरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। रात्रि 8 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान। विविध कलाकारों के स्वर में गाए मसीही भजन आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में यानी 5:10 पर, जिसके ठीक बाद 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वत व्यंजनों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। साय 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कल प्रातः 11:10 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। सुबह 6:10 पर प्रसारित किया जाएगा भक्तिभाव से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना और सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। पर्वतीय लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे गणेश दत्त कांडपाल के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत और प्रातः 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समूह स्वर में गाए रोहिलखंडी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 पर। सेहत कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर कल होगी डॉक्टर योगेंद्र सिंह से संकल्प मिश्रा की बातचीत विषय रहेगा हाइपरटेंशन कारण लक्षण और उपचार। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर गृहस्थी में आप सुनेंगे एडवोकेट सृष्टि तिवारी से बातचीत विषय रहेगा महिलाओं के लिए विविध कानून।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं की वाणी यानी युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा शर्मा। उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने वीकेंड को ना एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्षेत्र की जो युवाओं के लिए रोज़गार के नए दरवाजे खोल रहा है। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फूड प्रोसेसिंग की। आज सिर्फ खेती करना ही नहीं बल्कि खेती से जुड़े उत्पादों को प्रोसेस करके बाज़ार तक पहुँचाना भी एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। जैसे फल और सब्जियों से जूस, अचार, जैम या अन्य जो स्नैक्स है वो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू ही बन रहे हैं। और ख़ास बात तो ये है दोस्तों कि इसकी जो शुरुआत है वो आप छोटे स्तर से भी कर सकते हैं। कई युवा घर से ही अपना छोटा फूड बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। आजकल घर के बने मसाले, पापड़, अचार और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट में भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग से न सिर्फ रोज़गार मिलता है बल्कि किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि उनकी जो फसल है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाती है। तो दोस्तों, हमारे जो इन्फोटेनमेंट का सफ़र है आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाला है, लेकिन उससे पहले सुनिए एक खूबसूरत सा ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और नीति मोहन ने।

दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी कि आकांक्षा के साथ। दोस्तों, फेवरेट इस ट्रैक से पहले हम बात कर रहे थे फूड प्रोसेसिंग के बारे में, और फूड प्रोसेसिंग का जो काम आसान बनाया है वो बनाया है सोशल मीडिया ने। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो वो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और छोटे कोर्स भी कर सकता है दोस्तों। साथ ही सरकार की कई योजनाएं भी युवाओं की मदद कर रही है ताकि वे अपने छोटे उद्योग शुरू कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी नए आइडियाज़ हैं या आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से और जिसे आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह ने।

दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई, नौकरी, करियर, सोशल मीडिया, टारगेट्स और जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद को ही समय देना भूल जाते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा मन है ना, वो थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में हर इंसान को ज़रूरत होती है थोड़ी शांति की, थोड़े सुकून की और शायद खुद से मिलने की, और इसी ज़रूरत को पूरा करता है आध्यात्मिक पर्यटन। दोस्तों, आध्यात्मिक पर्यटन का मतलब सिर्फ धार्मिक यात्रा करना नहीं होता। ये एक ऐसी यात्रा होती है जहाँ इंसान अपने मन, आत्मा और विचारों को शांति देने की कोशिश करता है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए होता है, लेकिन आजकल युवा भी इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का युवा सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि मेंटल पीस भी चाहता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल लोग ऋषिकेश में योग और मेडिटेशन कैंप में जाना पसंद कर रहे हैं, कोई हिमालय की वादियों में ध्यान करते हैं, तो कोई वाराणसी की गंगा आरती देख कर एक अलग ही शांति महसूस करता है। और सच कहे तो ये सारी जगहें पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि भावनाओं और आत्मिक अनुभवों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी सोच के साथ कार्यक्रम के अगले गीत में, जिसे हमने दिया है फिल्म ओम शांति ओम से और जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे आध्यात्मिक पर्यटन की। दोस्तों, आध्यात्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे मानसिक तनाव को कम करता है। आजकल एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और तनाव युवाओं में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया में उलझे रहने से जो हमारा मन है वो भी थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में जब इंसान कुछ समय प्रकृति, ध्यान और शांति के बीच बिताता है तो उसे बहुत ही हल्का महसूस होता है। कई रिसर्च में भी ये सामने आया है दोस्तों कि मेडिटेशन और आध्यात्मिक गतिविधियाँ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। और दोस्तों, यह एक बात समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो आध्यात्मिकता का मतलब है वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुद को समझना, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना। अगर हम भारत की ही बात करें तो हमारे देश में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वैष्णो देवी जैसे पर्यटन जो स्थल हैं, यहाँ पे हर साल लाखों लोग आते हैं। ठीक है, और विदेशों में भी हमारा जो भारत है वो योग और ध्यान सीखने के लिए ही आते हैं, जो विदेशों से लोग हमारे यहाँ आते हैं। इन शिविरों में कुछ लोग कुछ दिनों के लिए अपने मोबाइल और इंटरनेट से भी दूरी बना के रखते हैं और योग, ध्यान और प्रकृति से जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक पर्यटन का असली मतलब तभी पूरा होता है जब हम वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को सम्मान करें। जब भी किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर आप जाएं, वहाँ की साफ सफाई बनाए रखें, डिसिप्लिन में रहना चाहिए और स्थानीय लोगों की

जो भावनाएं हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, आध्यात्मिक पर्यटन सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की भी यात्रा है। कई बार इंसान पूरी दुनिया घूम लेता है लेकिन खुद को नहीं समझ पाता। ऐसी यात्राएं हमें अपने मन की आवाज़ सुनना सिखाती है। तो अगर आप भी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और खुद को जीना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अभी करंटली या रिसेंटली ही किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर जा सकते हैं और अपने जो मन की शांति है उसको महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनाते हैं आपको एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से और जिसे आवाज़ दी है अमित त्रिवेदी ने।

100.5 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, अक्सर हम अपने पसंदीदा अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को जानते हैं? क्या हमें पता है कि हमारे सांसद कौन हैं, हमारे विधायक कौन हैं, या फिर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हम किसके सामने रख सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज का ये विषय आपके लिए ही है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि जनप्रतिनिधि होते कौन हैं। जनप्रतिनिधि के वो लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें जनता वोट देकर चुनती है ताकि वह उनकी समस्याओं और ज़रूरतों को सरकार तक पहुँचा सके। और दोस्तों, इसमें शामिल होते हैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, नगर पार्षद, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य। अब सवाल यह है कि युवाओं को इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है? तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रॉकस्टार से और उसे आवाज़ दी है मोहित चौहान ने।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आपको प्रतिनिधियों के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। तो आपको इसके बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके इलाके में सड़क खराब है, कॉलेज की सुविधाएं नहीं हैं, पानी या बिजली की समस्याएं हैं, या युवाओं के रोज़गार और खेल सुविधाओं की कमी है, तो इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की ही होती है। दोस्तों, आज का युवा जो है वो जागरूक है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायत नहीं करता बल्कि बदलाव लाना चाहता है, और बदलाव की शुरुआत जानकारी से होती है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में कैसे जान सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट से आप जान सकते हैं, राज्य सरकार की वेबसाइट से आप जान सकते हैं, सोशल मीडिया और स्थानीय कार्यालयों से भी आप जान सकते हैं, और सबसे आसान तरीका दोस्तों, अपने परिवार और शिक्षकों से बातचीत करके आप यह भी जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी योजनाएँ चल रही हैं और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ वोट देना ही लोकतंत्र नहीं है बल्कि सही प्रतिनिधि को पहचानना और उनसे सवाल पूछना भी लोकतंत्र की ताकत है। एक युवा ही एक मजबूत समाज और बेहतर देश बना सकता है। इसलिए अगली बार जब चुनाव की बात हो तो सिर्फ नाम या चेहरा देखकर नहीं बल्कि काम देखकर भी फैसला लीजिए। उम्मीद है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों को जानने और समझने की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर, जिसे आवाज दी है अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल ने।

दोस्तों आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें खत द्वारा जरूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा, निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल और पिन कोड है 2480001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनदरा हमारा सब श्रोताओं तय रमन रावत को नमस्कार सेवा सौली दगड़ा ही आज का कार्यक्रम का मेरा दगड़िया वीरेंद्र दत्त गैरोला जी को तय भी मेरू नमस्कार।
1: रमन जी आप तय भी मेरू नमस्कार और हमारा सभी श्रोताओं तय मेरी छोड़ बेटी भी नमस्कार सेवा सौली पहलाग।
0: श्रोताओं आशा च कि आप मैं कुटुंब दरी सब अपना घर माँ राजी खुशी वेलिया आज एतवार च और आज हम कर दा आप लुखों की झट झटांग चिट्ठियों की जगवाल यानी कि आज को कार्यक्रम होंदू श्रोताओं का अनुरोध मा है ना। हाँ। तो आप समझ ही गए होला कि हम क्या पहुंचाना छा
1: बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: तो सोचना की कोई जरूरत नहीं च बिल्कुल सोचा ना और सरासर चिट्ठी भेजा कि लेके कार्यक्रम हम शुरू करे ली और कार्यक्रम को रंग कन होलू यू आपकी चिट्ठियों पर ही निर्भर कर
1: बिल्कुल सही
0: है ना। तो उन तो हमारा श्रोता होते दगड़िया पता ही चाहिए हमारा कार्यक्रम को पता है ना
1: तो पर एक बार फिर बता देना
0: फिर किले बतान किले की अगर कोई नया सुनदरा हम दगड़ी जुड़िया होला ये कार्यक्रम का माध्यम से
1: हाँ।
0: तो ऊते वो सोचना होला कि चिट्ठी का भेजन
1: बिल्कुल
0: तो एक बार चिट्ठी को पता बता
1: दे हमारे ईमेल को पता छे चिट्ठी ग्राम जगत एट द रेट gmail.com ये पर आप चिट्ठी लिख भेजा गीत और गीतांक को नो अगर वो हमारा स्टूडियो में गीत हो लो तो हम आपते जरूर सुनोला।
0: बिल्कुल सही बोली और दगड़ा ही अपड़ू पता जरूर लिखण अपड़ू नौ भी लिखण अपड़ू पता भी लिखण जहाँ से कि हम तय पता लग साकू कि हमारा सुनदरा ये कार्यक्रम का माध्यम से हम दगड़ी कक कक बिटी की जुड़िया छन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना। तो दगड़िया हम धाती लगाई ये ली
1: हाँ।
0: जबर तक हमारा सुनदरा ये धाते सुनी की चिट्ठी भेज दन तबर तक किले ना हम अपनी पसंद को एक गीत सुने दिया तो क्या सुनाना छा आज
1: हम जौन सारी गीत सुने देना अपना श्रोता होते हैं तब तक जब तक उनकी चिट्ठी आ देना है ना।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अभी आपन सुनी रैबार, और रैबार से पहले आपन सुनी गोपाल दास एंड पार्टी का स्वर्मा सुंदर सी जौनसारी गीत।
2: जौनसारी गीत क्या छो की माँ सुदेवता की आराधना छे,
1: बिल्कुल
2: दगड़े मजा आएगी
1: बहुत,
2: और माँ सुदेवता को

0: बड़ू महत्व चूक है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल
0: देवताओं की
1: बिल्कुल
0: बात चनी जी, तो आज हम एक और देवता की बात कर दा। और
1: हाँ
0: आज हम अपना सभी सुनदरों ते मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई देना। हम
1: बिल्कुल
0: सब भी जानदा कि आज का दिन ते हम मातृ दिवस का रूप में मनांदा,
1: हाँ
0: पर लोग खूब सेल्फी खिंचना छन, फोटो डालना छन, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही बोलना
0: पर मैं
1: चाहिए।
0: सोचमुच हूँ कि अगर सब लोग अपनी माँ से इतना प्यार कर दन, तो फिर जो सड़कों का किनारा जो बुए बैठी छन, है ना, जो अनाथ आश्रमों में माँ छन, वो कह की बुए होली।
1: हाँ वही वही तो एक ये तो फोटो खींच लो कि एक वे बानो
0: हाँ
1: बनेगी जो छे
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: श्रोताओं के लिए कि मेरे मन कि हर दिन माँ को होंदू, वी
1: बिल्कुल
0: का बिना जीवन की कल्पना नहीं वे सकदी। इले ही मातृ दिवस तो भाई मेरे हिसाब से रोज मनाए चुनो, पर
1: हाँ
0: इन ना कि केवल सेल्फी ले ली, रील बनाई ली माँ दगड़ी, अब वे
1: बिल्कुल
0: का बाद माँ तय कोना फेंक्यू चे
1: हाँ कोई
0: मी के
1: खानों भी दिखाना
0: मी।
1: चाहिए कि नहीं कोई
0: हाँ
1: वही
0: या
1: नहीं
0: मी के
1: मतलब
0: सुना
1: तैसे
0: नहीं
1: है
0: छन,
1: ना।
0: मी के सुना नहीं छन, है ना।
1: हाँ
0: तो इन बिल्कुल नहीं कन, मातृ दिवस तभी सक्षम हो सकदू, सफल हो सकदू,
1: हाँ
0: जब हम अपनी माताएं बहुत इज्जत देवला, वी
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: बात मन ला और
1: हाँ
0: वी ते सम्मान देवला। जब वह बुजुर्ग भेजान दी
1: हाँ
0: कै काम ते कन लैक नहीं रेंदी, उबरी हम वी की कदगर देखभाल कर सकदा, वो ज्यादा जरूरी छ।
1: बहुत जरूरी है। ये दिन मनाना कोई उद्देश्य भी सुई छे है ना।
0: हाँ है ना,
1: माताओं तक को निस्वार्थ प्रेम बलिदान और समाज में वो को योगदान को सम्मान करने का वास्ते ही ये दिन मनाए जान दो है ना। और ये दिन की शुरुआत जो छे अमेरिकी कार्यकर्ता अन्ना जर्विसन ने अपनी माँ की याद में करी थे। पहलू आधिकारिक तौर पर यु मातृ दिवस 10 मई 1908 को वेस्ट वर्जीनिया में मनाए गए थे। तय का बाद यू हर साल 10 तारीख को मनाए जानो
0: मने
1: छे।
0: जानू छो। और आप देखा कि सारी दुनिया में बड़ा
1: हाँ
0: जोश का दगड़ी, जो जो पहाड़ों में हम बोलता छा कि गाड़ी नहीं जानी, अब फोन चल गए नहीं तो वो भी अब लगातार हम देखना छा कि सोशल मीडिया में लोग डलना छन कि मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी बात छे, पर
1: हाँ
0: अपनी माँ को सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी छे।
1: अरे यू ये की दिन नहीं हर दिन मनाना है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल, कि लेकिन हम अपनी माता सम्मान कर ला, तो वो एक
1: हाँ
0: दिन हो चाहे 100 दिन हो, है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: हाँ
0: जिंदगी माँ का बिना बिल्कुल अधूरी छे, हम वी का
1: हाँ
0: बिना कुछ नहीं छा। अगर
1: बिल्कुल
0: माँ की मृत्यु हुए भी गी,
1: हाँ
0: तब भी वह हमारा जीवन माँ हमेशा जिंदा रहेंगी, कि
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: वी की दी आदत, वी का
1: हाँ
0: संस्कार, वी की शिक्षा हमेशा हमारा दगड़ी चल दी, जो हमते परेशानियों से बचा दी,
1: बिल्कुल सही बोलना
0: है
1: चाहिए
0: ना।
1: आप। हाँ
0: तो आप सभी तो एक बार फिर से बधाई छे मातृ दिवस की। और
1: हाँ
0: अब हम कार्यक्रम ते अग्ने बढ़ोदा, कि लेकिन हम धाद लगे छे कि चिट्ठी भेजा, चिट्ठी भेजा,
1: बिल्कुल
0: तो चिट्ठी आई आई च।
1: कह के छह चिट्ठी आई हैं।
0: हाँ यू चिट्ठी में पढ़ू छो, यू छन देवेंद्र सिंह रावत जी,
1: हाँ
0: और यू चिट्ठी आई च बड़ो वाला निकट जौली ग्रांड जिला देहरादून बिटी की। यू को
1: अच्छा
0: अनुरोध छ कि मंजू सुंदरियाल को गयू कोई भी सुंदर सी गीत सुने दिया।
1: हाँ तो मंजू सुंदरियाल जी को गीत हम अच्छे तो हम होते हैं यू अच्छू करी उनकी यू लिख लिख के कोई भी गीत सुने
0: ना
1: दिया है
0: ना वो
1: ना।
0: भी छे, पर आज जन हम अपनी बुए ते याद करना छा, माँ ते याद करना छा ना, तो
1: बिल्कुल
0: बेटी अपना जब सहसुर माँ हुदन, तो अपनी
1: हाँ
0: बुए ते याद करी ते कदगा रुदन, कदगा याद आ दियो ते, ये
1: बिल्कुल
0: गीत माँ हम जरूर सुन ला। तो आवाज सुन दा मंजू सुंदर आपको गयू, ये सुंदर सी खुदेड़ गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, अभी आपन सुनी रैबार, और रैबार से पहले आपन सुनी मंजू सुंदरियाल का स्वरमा सुंदर सी गढ़वाली गीत।
5: है कि चिट्ठी पढ़ू छोमिया?
4: हाँ, कह कि
5: है कि चिट्ठिया विनीता थपलियाल जी की और दगड़ा ही टुक टुक नवानी जी की।
4: अच्छा।
5: रिंग रोड नथनपुर देहरादून बिटी की।
4: हाँ।
5: और ये बोलना छन की ग्राम जगत की पूरी कुटुम्ब दरित है विनीता थपलियाल की तरफ से सेवा सौंधी।
4: हमारी तरफ भी टीवी सेवा संभाली। नमस्कार,
5: और वो बुनाजन की आपसे निवेदन चाहिए कि नरेंद्र सिंह नेगी जी की आवाज माँ तेरी पीड़ा माँ दुआसु।
4: अच्छा,
5: युगड़ उलगी सुने दिया।
4: हाँ।
5: है ना। हाँ। और बुनाजन की आप सब उदयबल आकाशवाणी का 90 सालों की उत्सव माँ बहुत बहुत बधाई चुबल।
4: तो धन्यवाद, और आप भी श्रोता छन नियमित, तो आप भी बधाई जो
5: आप भी बधाई छे। और आप लोगों का बिना आकाशवाणी 90 सालों तक लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते छो। तो सबसे ज्यादा बधाई हमारा सब भी सुन दोनों को तय जो ये आकाशवाणी तय इतना प्यार दे, है ना, इतनी लंबी यात्रा हम तभी तय कर सके। और दगड़ा ही आपसे क्षमा भी चाला हम कि लेके जो यू गीत तेरी पीड़ा मधु आंसू यू गीत आकाशवाणी माँ नरेंद्र सिंह नेगी को नी गई उच यू कैसेट को गीत
4: कैसेट
5: तो हम यू तो नहीं सुन सकला, पर आप निराश नहीं हुआ कि लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी को एक सुंदर से गीत हम आपते सुनाना छा।
4: तो लिया सुना यू गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुनी नरेंद्र सिंह नेगी जी का स्वरमा यू सुंदर सी गढ़वाली गीत।
1: दगड़िया चिट्ठियाई च जाखन देहरादून बेटे की पीताम्बर सिंह चौहान और मंजू रावत की।
0: अच्छा।
1: और यू बुना छन की सबको शुभ संध्या।
0: हाँ, तो हमारी तरफ बेटी भी शुभ संध्या आपते हैं।
1: और बुनाचन की पूनम सती की आवाज में कोई भी गीत सुना दिया।
0: अच्छा, यू भी बढ़िया करी तो उनकी कोई भी गीत है। ये मैं कम से कम बंद नहीं की कोई गीत मिलता नहीं चाहना पर्टिकुलर जो लिखा रहना। तो यू पूनम सती का स्वर में हम होता ये गीत सुनो ना, तो एक आनंद ले आओ आप, है ना।

0: श्रोतों, अभी आपन सुनी पूनम सती को गयूँ यू सुंदर सी गीत, और ये गीत से याद आएगी कि हमारी दीदी भूलियों की क्या हालत रहे होली की। लेकिन इन मने जानदू कि जो हमारा लोकगीत छ न वहाँ माँ हमारू जनजीवन दिखेंदू, है ना। तो हमारी दीदी भूली का तो परेशान रहें दी होली जो उन गीत ही बनाए छो, पर आज सुन माँ यू बहुत सुंदर लगदन और पता चल दू कि हमारे संस्कृति सभ्यता क्या रहे होली।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब रमन जी एक चिट्ठी आई छे मानसी रावत कारगी देहरादून बेटी, ये लिखना चन की संगीता गैरोला का स्वर में वाले कोई भी एक गढ़वाल गीत सुने दियावा। तो यूं को गीत हम अच्छे हम ये थे सुनो ना, तो लियावा सुना ये गीत है।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुनी संगीता गैरोला का स्वरमा यू सुंदर सी गढ़वाली गीत।
1: और अब अही चिट्ठी दिनेश चंद थपलियाल जी की, जागृति विहार, नेहरू ग्राम रोड, नथनपुर, देहरादून बिटी की। और यू आप जानदाई छा कि हमारा सदन एक लिखवार छन।
0: बिल्कुल।
1: और यू बुना छन कि 90 साल पूरा होने पर आप सब यू बहुत बहुत बधाई छे।
0: हमारी तरफ भी आपते हैं बहुत धन्यवाद। हाँ। और आपते हैं भी बधाई क्योंकि आप हमारा नियमित श्रोता छन।
1: और यू सुन चाणा छन किशोरी लाल की आवाज माँ हिलमा चांदी को बटना, पर यू गीत तो शायद
0: ना यू गीत नहीं छे।
1: चलो कोई बात नहीं छे, किशोरी लाल को गयू यू सुंदर सी गढ़वाली गीत।
2: राडा की रेडो।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुनी किशोरी लाल का स्वरमायु सुंदर सी गढ़वाली गीत। और अब हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को वक्त होने वालों से थोड़ी देर में आप सुन ला हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लैंसडाउन में भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है और नई टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के

0: 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वास्थ्य युवाओं की अहम भूमिका है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 2 दिवसीय लैंसडाउन प्रवास के दौरान के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। राज्यपाल ने पहले वॉर मेमोरियल में राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के साथ आयोजित सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक जीवन, अनुशासन, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है और भारतीय सेना सदैव देश की सुरक्षा एवं गौरव की प्रतीक रही है। इसके बाद राज्यपाल ने भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया और वहां कार्यरत महिलाओं एवं कार्मिकों से संवाद किया। राज्यपाल ने केंद्र की कार्यों की जमकर सराहना की।
1: आज लैंसडाउन के अंदर गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र, वुमेन एम्पावरमेंट केंद्र के अंदर में आज मैंने देखा कि कितना सुंदर कार्य मुखिया है। इनकी सोच से मैंने एक कॉफी शॉप देखी, उसके अंदर में किस प्रकार से क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म एक बहुत ही सुंदर स्टैंडर्ड की कॉफी शॉप को उन्होंने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है कि किस प्रकार हम अपने महिलाओं को, अपनी बेटियों को एम्पावर करें ताकि उनकी पैशन, उनकी लगन, उनका जो हुनर है वो किस प्रकार से उनसे उनका अर्थव्यवस्था के अंदर में जायजा हो।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषाओं पर ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ब्रिजलाल और समिति के सदस्यों ने आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं, सौंदर्यकरण, नदी तट विकास, पैदल मार्गों, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समिति सदस्यों ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित एवं आकर्षक स्वरूप विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुगम सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉ धन सिंह रावत ने सतपुली के खैरासैण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। श्री महाराज ने कहा कि यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का प्रयास है। इस दौरान डॉ रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि वे प्रतियोगी दौर में पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित शिविर में आमजन को निशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने लोगों से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालन सहित

0: कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान आय, जाति, दिव्यांग एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण का कार्यक्रम किया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किया जाता है।
1: ये शिविर मुख्यतः जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मजदूर वर्ग है, उनको ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्यतः ये था कि समाज का जो सबसे कमजोर तबका है उस तक पहुंच सके, उनको सरकारी सेवाएं या सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सके। और काफ़ी हद तक लोगों को बहुत सारी सामग्री वितरित की गई, स्टॉल लगाए गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का लोगों ने फ़ायदा उठाया। बहुत सारे बच्चों को जो मेधावी छात्र थे उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनको ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले।
0: चमोली जिले के गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रभारी जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में जनपद की 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। विजेता टीम को 21 व उपविजेता टीम को 11,000 की नगद धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के संयोजक दीपांकर परमार ने बताया कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट में जिले की सर्वश्रेष्ठ 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा।
2: दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेडियम गोपेश्वर में करवाया जा रहा है और जिला स्तरीय ये फुटबॉल टूर्नामेंट है का जो उद्घाटन किया गया वो प्रभारी क्रीडा अधिकारी गोपेश्वर द्वारा कराया गया है। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे द्वारा प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए दिया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी चल रही।
0: राज्य में कल से मौसम एक बार फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। विभाग ने पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं 12 और 13 मई को मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने लैंसडाउन में भुल्ली सशक्तिकरण केंद्र में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन किया। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है और नई टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत छ आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा मिछो वीरेंद्र दत्त गेरोला
1: और मिछो रमन रावत। तो दगड़िया देर नहीं करना कि लै कि अभी एक चिट्ठी और बची, चिट्ठी एक क्या बची जो और भी बची छन।
0: बिल्कुल,
1: पर पहले मैं चिट्ठी पढ़नू छो। ये चिट्ठी आई छ मिनिस्ट्री रोड नई दिल्ली मोतीनगर बिटी की।
0: हाँ।
1: और ये चिट्ठी भेजी छ अनिल मानसी गौरव कविता अरोड़ा की।
0: अच्छा,
1: है ना। और यू बुना छन।
0: हाँ।
1: कि नमस्कार छ और बहुत दिनों का बाद हम चिट्ठी भेजना छा।
0: नमस्कार है।
1: हाँ, पर बुना छन की चिट्ठी जरूर शामिल करें वल।
0: तो बिल्कुल हम करना।
1: आप निश्चिंत रहा, हमन चिट्ठी आपकी शामिल करे ली और यू डीटीएच का माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम तय सुनना छा।
0: अच्छा।
1: तो हम ते बहुत खुशी होनी छ कि दिल्ली बिटी की भी हम दगड़ी हमारा श्रोता जुड़िया छन। और यू बुना छन की एक गीत सुनाया दया बल चंद्र एस नेगी को गयु।
0: अच्छा।
1: अब मेरी समझ में यू नहीं आनु छ की नरेंद्र सिंह नेगी बुना छन की चंद्र सिंह राही बुना छन।
0: तो हम चंद्र सिंह राही को
1: किले ना हम चंद्र सिंह राही को गयु। यू सुंदर सी गीत आप ते सुनाना।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुनी चंद्र सिंह राही का स्वर मा यू सुंदर सी गढ़वाली गीत।
1: और दगड़िया चिट्ठी और भी छन, पर समय नहीं छे। आप बिल्कुल निराश नहीं वा किले की अगला हफ्ता हम फिर से सुनोला आपका पसंद का गीत। और बहुत बहुत अच्छा लगणु छ कि बहुत तरह की चिट्ठियाँ आनी छन, और जो गीत अभी अमन सुने छ यू बुना छन कि वो फिर से चिट्ठियाँ ही छ। वो बुना छन कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत सुन छो बोला मन है, पर सी एस नेगी तो कोई बात नहीं छ। वो बुना छन कि यू गीत भी बहुत अच्छो छो और यू गीतांग भी बहुत अच्छा छा। तो चला अपन ये बातें समझी छे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करना छा कि हम अभी सब ये सुन दन होते अच्छू लगी होलू। और अब वक्त हुएगी गढ़ोली मा प्रादेशिक समाचारों को, तो आव सुन दा गढ़ोली मा प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं अखिलेश चंद्र ग्यारोला। पहली मुख्य समाचार, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लेंसीडॉन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का कु उत्साहवर्धन के वॉर मेमोरियल में शहीदों तें श्रद्धांजलि अर्पित करी के विकास योजनाओं की समीक्षा के। नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन, आम लोगों तें निशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करेंगे। अल्मोड़ा कसल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने कार्रवाई, कई अनियमितता मिन पर प्लांट हुए सील। और राज्य

0: का अलग अलग हिस्सों में भोल हल्की बारिश होने की संभावना, कखी कखी आंधी तूफाने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपना द्वि दिना का लैंसेडॉन दौरा का दौरान आज सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनका परिवारजनों का को उत्साहवर्धन के ये दौरान वॉर मेमोरियल पहुंची के उन शहीदों तें श्रद्धांजलि दे और वीर नारियों तें सम्मानित के। राज्यपाल ने गढ़वाल राइफल्स की वीरता और राष्ट्र सेवा की भावना की सराहना के और बोली कि यह रेजिमेंट देश का गौरव और शौर्य की पछाण छ। उन बोली कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि छ और यखा का युवा राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा सी यखा के युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा सी छ। ये दौरान गढ़वाल राइफल्स केंद्र का उत्कृष्ट योगदान खुण विशेष ट्रॉफी भी प्रदान किए गए। अपना द्वि दिना का कार्यक्रम का दौरान राज्यपाल ने जिला में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में पर्यटन, सड़क, पेयजल, स्वरोजगार और अन्य विकास कार्यों की जानकारी दिए गए। उन अधिकारियों ते लैंसेडॉन में आधुनिक पुस्तकालय विकसित करने का और पर्यटन विकास का दगड़ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। नई टिहरी में आज उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल का तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन किए गए। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित ये शिविर में आम लोगों तें निशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधा उपलब्ध करेगन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आलोक महरा उपस्थित रहनी। ये अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बोली कि शिविर का उद्देश्य न्याय तणी समाज को अंतिम मनखी तक पहुँचाण छ। उन्होंने बोली कि विधिक सेवाएं केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रहन चेन, बल्कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद जनी मामलों में भी निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जांदी। उन्होंने लोकड़ों से अपना अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने को आह्वान भी करी। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालन सहित बिझा विभागों ला स्टॉल लगाकर लोगों को समस्याओं का समाधान करी। ये दौरान आय, जाति, दिव्यांग एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई गयी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ला निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाइयों को वितरण भी करी। आकाशवाणी देहरादून का वास्ता समाचार कक्ष बटी जय वीर सिंह।
0: बागेश्वर जिला की सुंदरढुंगा घाटी में 15,092 फीट की ऊंचाई पर स्थित कनकाटा दर्रा ते युवा ट्रैकरों की एक टीम ने 3 दिनों में सफलतापूर्वक पार किया। यू दर्रा सुंदरढुंगा घाटी का कठिन और रोमांचक ट्रैकों में एक मने जांदू। औखा पहाड़ी बाटा, बर्फ सी ढकिया ट्रैक और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जनी चुनौतियों का बावजूद दलन यू अभियान पूरुक है। ट्रैक का दौरान खराब मौसम का कारण मुश्किल बढ़ियन पर टीमन संयम और आपसी तालमेल सी यात्रा पूरी के। माउंटेन गाइड और अभियान दल का लीडर जीतू दानू ने बताया कि सुंदरढुंगा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता ये ट्रैक ते खास बना दी। उन बोली कि इना अभियान युवाओं ते एडवेंचर टूरिज्म की ओर आकर्षित करने का साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों ते नई पहचान दिलाउंदन।
2: ये जो कनकाटा पास ट्रैक था, ये टोटल 4 लोग थे, इसमें 3 लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुखराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था और इसको हमें पूरा करने में जातुली 3 दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कम्प्लीट हो गया था ये हमारा।
0: उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संघ का पदाधिकारियों ने आज ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ी देहरादून में शिष्टाचार भेंट के। ये दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों ने स्थानांतरण, पदोन्नति, मृतक आश्रित नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों से जुड़िया विभिन्न मुद्दों का बारह माह श्री चौधरी तय मांग पत्र सौंपी। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों तय गंभीरता से सुनी को बोली कि सभी मामलों को नीतिगत और न्यायोचित तरीका से समाधान किए जालू। उन संबंधित अधिकारियों तय समस्याओं का त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिनन। श्री चौधरी ने बोली कि कर्मचारी कै भी विभाग की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होंदन और उनकी समस्याओं को समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता छ।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसार

0: કરી જાણો છે. તાજા સમાચારો ખૂણી આપ અમારા સોશિયલ મીડિયા એક્સ વ ફેસબુક પેજ આકાશવાણી ન્યૂઝ ઉત્તરાખંડ થે ફોલો કર સકદે. દગડા દગડી યુ સમાચાર અમારા યુટ્યુબ ચેનલ આકાશવાણી ન્યૂઝ ઉત્તરાખંડ પર ભી ઉપલબ્ધ છે.
1: अल्मोड़ा जिला का सल्ट क्षेत्र का झीमार मा अवैध रूप से संचालित होने लग्या हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई के और प्लांट सील कर दिए. संयुक्त निरीक्षण टीम ने जांच का दौरान कई गंभीर अनियमितता पायन जैका बाद यह कार्रवाई हुए. बतायूं जानूं छ कि पिछला करीब 2 महीनों बिटी प्लांट को संचालन बिना आवश्यक अनुमति का किए जानू छ. स्थानीय लोगों पर्यावरण और सुरक्षा तय खतरा बतैक ये की शिकायत प्रशासन तय कहत है. मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचना का बाद प्रशासन खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों की टीमन मौका पर पहुंची के निरीक्षण के जांच में पता चली कि प्लांट का पास संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमति नीच है. साथ ही चिमनी निर्धारित मानकों से कम ऊंचाई की पाए गए और परिसर का चारों ओर नियमानुसार 4 दीवारी भी नीच है. खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि कई नियमों का उल्लंघन तय देखी के प्रशासन ने प्लांट तय तत्काल प्रभाव से सील कर दिए.
2: इसमें मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा CTO और CTA की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया. ये मगरेतर कार्रवाई हेतु SDM साहब पर इसमें स्थित रिपोर्ट दी जाएगी. कब तक प्लांट बंद रहेगा?
1: उत्तराखंड में भोल बिटी मौसम का फिर बदलना का आसार छन. मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गरज चमक तेज हवाओं और बारिश ने लेकर चेतावनी जारी की. मौसम विभाग का अनुसार राज्य का पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती. वखी मैदानी जिलों में कखी कखी हल्की बारिश और गरज का दगड़ी बौछार पड़ने की संभावना छन. 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती. विभागन पर्वतीय जिलों में बिजली चमकण और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान लगे. वखी 12 और 13 मई तय मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना छ. उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी तेज बारिश ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवा चल सकदिन. मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाला यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला लोगों तय सतर्क रहने की सलाह दी. संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका भी जताए. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिला का सतपुली स्थित खैरासैण में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन को उद्घाटन किया. ये सी स्कूली छात्रों तय अपना इलाका में ही बेहतर उच्च शिक्षा सुविधा मिल सकली. सतपाल महाराजन बोली कि आधुनिक सुविधाओं दगड़ी सुसज्जित ये महाविद्यालय में विद्यार्थियों तय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हुएली. वखी डॉ. धन सिंह रावतन बोली कि सरकार पर्वतीय इलाकों में शिक्षा सुविधाओं तय मजबूत करने का वास्ता लगातार काम करनी छ ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का युवाओं तय भी आधुनिक शिक्षा को लाभ मिल सके. ये के बाद सतपाल महाराजन सतपुली झील निर्माण कार्यों को निरीक्षण के और अधिकारियों तय गुणवत्ता का दगड़ी समयबद्ध तरीका से कार्य पूर्व करने का निर्देश दिन. उन बोली कि करीब 56 करोड़ रुपयों की लागत से बननी ई झील का पूरा होने से इलाका में पर्यटन और रोजगार तय बढ़ावा मिले. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लैंसिडॉन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उत्साहवर्धन के वॉर मेमोरियल में शहीदों तय श्रद्धांजलि अर्पित करी के विकास योजनाओं की समीक्षा के. नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर को आयोजन. आम लोगों तय निशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होने लग्या हॉटमिक्स प्लांट पर प्रशासन ने कार्रवाई. कई अनियमितता मिन पर प्लांट हुए सील. और राज्य का अलग अलग हिस्सों में भोल हल्की बारिश होने की संभावना. कखी कखी आंधी तूफाने की चेतावनी. धन्यवाद.
3: श्रोताओं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा ही ग्राम जगत कार्यक्रम बटोलने रमन रावत और
4: वीरेंद्र दत्त गरुड़ लेते हैं
3: आज्ञा दिया. नमस्कार.

पर्वत्यांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को भैया विकास की नमस्कार। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं तो दुनिया की हर चीज बदल जाती है, कि यूं तो दुनिया की हर चीज बदल जाती है पर माँ की ममता कभी नहीं बदलती। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम उस हस्ती का जश्न मना रहे हैं जिसके होने से हमारा अस्तित्व है। आज मदर्स डे के इस खूबसूरत से मौके पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरा संसार है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तब वो माँ ही थी जो हमारी हर बात समझ लेती थी। हमारी पहली गुरु, हमारी पहली दोस्त और हमारी सबसे बड़ी रक्षक सिर्फ माँ होती है। और किसी ने खूब कहा है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए शायद उन्होंने माँ को बनाया। तो आज मदर्स डे हम मना रहे हैं, आप सभी बहनों, माताओं और हमारे कार्यक्रम सुनने वाले साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ होना कितना कठिन है, ये एहसास हमें तब होता है जब स्वयं कोई स्त्री माँ बनती है। तो इसलिए माँ की भावनाएं, माँ के प्यार की हमें कद्र करनी चाहिए। आज जिस तरह से हम एकल परिवार का चलन देख रहे हैं, बच्चे बाहर विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है आप तरक्की करिए, लेकिन जिन्होंने आपको इस संसार में लाया है, इस काबिल बनाया है कि आज आप विदेशों में हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आपने सोचना है, यानी कि आपके पेरेंट्स आश्रमों में हैं। और कुछ पंक्तियाँ साथियों आज के इस खास मौके पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि तुम क्या जानो दर्द मेरा, कि तुम क्या जानो दर्द मेरा, मैं अपनों का सताया हूँ, ये आश्रम मेरा घर नहीं, मेरे अपनों का लाया हूँ। तुम क्या जानो दर्द मेरा, मैं अपनों का सताया हूँ, ये आश्रम मेरा घर नहीं, मेरे अपनों का लाया हूँ। जिन अपनों के लिए तड़पता है दिल, मैं उन्हीं का भुलाया हूँ। कि तुम क्या जानो दर्द मेरा, मैं अपनों का सताया हूँ। तो इसलिए अपने अभिभावकों की आपने कद्र करनी है। जितनी ज़रूरत साथियों बचपन में हमें थी, उनकी उतनी ही ज़रूरत जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको हमारी होती है। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में बातचीत यूं ही चलती रहेगी, लेकिन अभी समय है आपके मनोरंजन का। ये सुनते हैं ये सुंदर सी रागिणी।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
5: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
4: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
5: व्हाट्सएप 7895372936।
4: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि जगत में। और मौसम ने साथियों आपकी बार जो करवट बदली है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गर्मी में काफ़ी गिरावट है। तापमान जो इस समय मई माह में हम अक्सर देखा करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती थी, लेकिन साथियों आपकी बार क्योंकि बरसात हुई है तो अच्छा तापमान है, लेकिन धीरे धीरे अब क्योंकि गर्मियों का समय है तो गर्मियाँ तो होनी ही हैं। और साथियों, गर्मियों में जो हमारे पशु हैं उनकी किस तरह से हमने देखभाल करनी होती है, इस बात पर भी हमें खास ध्यान रखना होता है। क्योंकि साथियों, जो हमारे टीन के शेड हैं, अक्सर धूप में जब हमारे पशु उसके नीचे बंधे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके नीचे साथियों इतनी गर्मी होती है कि शायद उसके नीचे रह पाना भी संभव ना हो। तो ऐसी

0: तो उन रोगों के प्रति हमें सचेत रहना है, अपने पशुओं का टीकाकरण हमें अवश्य कराना है। साथ ही अगर किसी भी तरह के संक्रामक रोग होने के लक्षण हमारे पशुओं में प्रकट हों तो तुरंत उस पशु को आप अलग करिए, जो आपके घरेलू उपचार हैं उनको आप शुरू करिए और उसके बाद डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। पशुओं के साथ अक्सर गर्मियों में हमने देखा है कि जो हमारे वन हैं इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वनाग्नि से, जंगल की जो आग है साथियों, इससे पूरे के पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं, और उसमें रह रहे जो पशु हैं, जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए कितना दर्दनाक वो मंजर रहता होगा। तो किस तरह से जंगल की आग में काबू पाने के लिए जो जन भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम आपके लिए भेंट वार्ता लेकर आए हैं डॉक्टर SS रसायली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विनय ध्यानी। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों वनाग्नि की घटनाएं हालांकि मौसम को देखते हुए कम हैं, लेकिन फिर भी जो वन विभाग है और हमारे जो जनता है, ग्रामीण जनता है, वो अभी भी वनों को आग से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री SS रसायली जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त वनाधिकारी हैं। रसायली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, धन्यवाद ध्यानी जी, आपको और आपके श्रोताओं को, समस्त को मेरे तरफ से प्रणाम।
1: आज हम इस गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं कि जब जंगलों की आग की बात आती है तो वहां पर जन सहभागिता एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, क्योंकि जंगल उस जनता के हैं जो कि उसके आसपास रह रही है। लेकिन क्या वो अपनी साझी जिम्मेदारी उन वनों के प्रति रखते हैं, लगता है आपको?
2: इसमें नहीं रखते हैं कहना भी मुश्किल है, रखते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि उसकी जिम्मेदारी समझते हैं, जंगलों को वनाग्नि से बचाने का उनके अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि समझते हैं कि ये वन जंगल हमारा तो है नहीं, ये तो सरकार की है, हमें इसमें कोई सरोकार है नहीं, तो हम इसमें अपने जान जोखिम में क्यों डालें, क्यों जाएं, ये भी मानने लगे हैं आजकल। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ हो रही है।
1: आपका एक लंबा सेवा काल रहा और आपने जंगलों को देखा, हमारी इस प्राकृतिक संपदा को देखा, जैविक संपदा को देखा। आप क्या मानते हैं कि जंगलों में जो आग लगने के मुख्य कारण हैं वो क्या हो सकते हैं? ये मानव जनित हैं या किस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे कि हमारे जो कीमती जंगल हैं वो आग की चपेट में आते हैं?
2: मैंने तो आज तक जितने भी अनुभव किया है, जितने भी वनाग्नि होते हैं वो समस्त जो आज वनाग्नि मानव जनित होते हैं, मानव के लापरवाही हो या जानबूझ के लगाया गया हो। और हमने ऐसा भी देखा हुआ कि जहाँ पर जंगलों में हरे हरे पत्ते के पेड़ वृक्ष होते हैं वहाँ से तो पत्ते ले आते हैं लोग अपने इसके मवेशियों के लिए, लेकिन जहाँ पर ऐसे पेड़ वृक्ष नहीं होते हैं और जो घास पर ही अपीय होते हैं, तो घास में आग लगाने, उनका मान्यता है कि घास पे आग लगाने से बरसात के बाद में मुलायम घास पनपते, वहाँ पे उस घास में चरते हैं, उस काट के ले आते हैं, तो उनको एक प्रकार से अपने मवेशियों के लिए घास मिल जाता है। इस प्रयोजन से घास में आग लगाते हैं। और मैंने कई जगह देखा है, ये पहाड़ों में भी, बहुत ऊंचे पहाड़ों में भी जो बकरी चराने वाले जाते हैं वो भी जब ऊपर जाते समय जंगल में आग लगा के जाते हैं, घास के मैदान में आग लगा के जाते हैं, ताकि वापसी में उनको वहाँ पर मुलायम घास मिलते रहे। ये ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो पहाड़ में इतने दुर्गम दूर दराज क्षेत्र में आग लग रही, वहाँ पर शिकार हो रहा होगा। तो जब मैंने वहाँ जाकर देखा कि वास्तव में क्या स्थिति है, तो वो शिकार नहीं था, वो वास्तव में कई जगह तो शिकार भी था, लेकिन कुछ एक जगह पे मैंने देखा कि वो बकरीवाल द्वारा आग लगाए गए थे वो। और मैंने जब पूछने पर कहा कि नहीं सर, जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पर घास मिलते हैं हम लोग को, ये भी एक कारण है।
1: तो इसको भ्रांति न मान के बल्कि सच्चाई के बहुत नजदीक है कि कहीं ना कहीं मानव जनित ही ये आग की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ जंगल की आग एक पेड़ को या एक जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो हमारी तमाम जैव संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जंगल की आग तो सिर्फ एक, लेकिन उसके नुकसान अनेक हैं। तो ये नुकसान क्या-क्या हैं, किस तरह से हमारी ग्रामीण जनता समझे कि सिर्फ हम एक हरी घास के लिए या छोटी घटना समझकर उसको नहीं आंक सकते, बल्कि वो बहुत बड़ी हानि है।
2: अब बीच में एक देहरादून पुस्तकालय में इसी प्रकार का एक गोष्ठी हुआ था, जिसमें कि जो नैर नदी अस्कोट आराकोट यात्रा के इसमें
1: जी
2: संदर्भ
1: जी
2: में
1: जी
2: नैर नदी के इसमें उन लोगों ने यात्रा किया था, और उन्होंने जो देखा, एक तिवारी करके लड़का था, नहीं, उस तिवारी लड़का ने कहा कि साहब मैंने देखा कि हमारे धारे नवले सूख रहे उस

0: धारे नवले सूख रहे हैं, और मेरे विचार में ये धारे नवले सूखने का मुख्य कारण वन अग्नि है।
1: अच्छा
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज़ जो है बचाए और अनुभव करके बताया, तो मैंने उस पर थोड़ा जोर दिया। मैंने कहा कि वास्तव में ये वन, मैंने हमारे धारे नवले सूखने के मुख्य कारण वन अग्नि है। और मैं कई बार गांव वालों में बोलता हूँ कि जैसे कि एक घड़ा को पका लेते हैं, जब पानी रिस के बाहर न जाए पका लेते हैं, और हम जब खरीदते हैं तो पका घड़ा ही खरीदते हैं, नहीं? इसी प्रकार से वनग्नि होने पर धरती की सतह जो होता है, वन की सतह होता है, वो पक जाता है। पके हुए मिट्टी के ऊपर, जैसे बाहर घड़ा के बाहर पानी नहीं आता है, पके हुए मिट्टी से पानी अंदर नहीं जाता है। अगर पानी अंदर नहीं जा पाया तो धारे नौले में पानी सूखने लगते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने अभी एक लेख लिख रहा था, तो उसमें मैंने ये कहा है कि देखो, हमारे उत्तराखंड का, हमारे गंगा घाटी जो गंगा मैदानी क्षेत्र है, उसमें जो रहने वाले 40% जो हमारे देशवासी हैं, उनके पेयजल का, पानी का जो स्रोत है, उसको बनाए रखना हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली हम, हमारे जो है, हम लोग अपने सीमाओं का रक्षा करने में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन ये बहुत, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पानी को बनाए रखना है। और ये दो, गंगा और यमुना जैसे बड़े नदियों में पानी, वहाँ हिमालय पर्वत से आते हैं, लेकिन हिमालय पर्वत से जितना पानी आते हो, लगभग उतने ही पानी हमारे जंगलों से भी आते हैं।
1: जी
0: लेकिन जंगल में पानी जो संग्रहण करने की क्षमता, आग लगने के कारण ये खत्म हो गया, तब जो है हमारे धारे नौले सूखने लगेंगे। धारे नौले सूखेंगे तो फिर गंगा यमुना में पानी भी
1: कम
0: कम होने
1: होगा।
0: रहेंगे, तो पूरा घाटी में, गंगा घाटी में फिर लोग जो है उसमें पानी के लिए परेशान हो जाएंगे।
1: देखिए, वनाग्नि से सीधा जल संकट जुड़ रहा है, और ये हमारी जनता को समझना होगा कि एक छोटी सी जंगल की आग को हम सिर्फ जंगल की आग न समझें, बल्कि इतना भी है कि उसके अंदर, उस पूरे जंगल के अंदर कई जीव जंतु हैं, हमारी जैव संपदाएं हैं। छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर अंडे देने वाले या जो जंगली जानवर हैं वो भी है, उनको भी नुकसान हो जाता है। लेकिन जल संकट आपने बहुत बड़ा संकट बताया। अब हमारे जो ग्रामीण हैं उनकी साझेदारी, उनकी सहभागिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए? क्या हम जो वन पंचायतों का एक अवधारणा थी उसको दोबारा से और मजबूत करने की जरूरत है?
0: मैं थोड़ा सी से इसका, आपका जो आपने कहा है कि जनभागी सहभागिता की बात करें, उससे पहले थोड़ा सा आपने जो जिसमें थोड़ा सा ये किया था कि किस प्रकार से
1: नुकसान।
0: जंगली जानवरों को नुकसान होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कई गांव में मैंने जब गया था, वहाँ पर लोगों ने कहा कि साहब, अगर जंगल में आग नहीं लगाएंगे, गाँव के आसपास जंगल में आग नहीं लगाएंगे, तो जंगली जानवर फिर हमारे खेत में आ जाते, बड़ा हो जाते, तो जब आग लगा देते तो भाग जाते वो। लेकिन उनका धारणा है कि ये आग जो है कुछ दूरी तक जाकर के समाप्त हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ तक जाना है, वो तो पूरा फैल जाता है।
1: जी
0: और पूरे जंगल में आग लगने पर जो है जंगली जानवर को वहाँ खाना खाने का सामान मिलता नहीं, तो वो फिर जो है भूखे प्यासे, पानी भी सूख जाते हैं, भूखे प्यासे हमारे गांव की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते, तो आ जाते हैं, और एक मानव बने जो संघर्ष की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और छोटे छोटे के जो चिड़िया है उसके घोंसले जल जाते हैं, घोंसले में अंडे जल जाते हैं, अंडे के अंदर के जो भ्रूण ये होते हैं वो भी कोयला बन जाते हैं, पूरा जलता नहीं कि अंदर का कोयला बन जाता है, ऐसा घटना हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इस प्रकार से काफ़ी परेशानी होते हैं। लेकिन आग लगाने का कारण जो मैंने देखा, मैंने इसमें समाधान क्या, कैसे सहभागिता हो सकता है, एक चीज़ का हम कर सकते हैं कि हमने तो कोशिश किया है कि गांव वाले कहते हैं कि सब जंगल में आग नहीं लगाएंगे, पिरुल को नहीं हटाएंगे या पुराने घास को जला कर नष्ट नहीं करेंगे, तो नए घास नहीं आते। मैंने कहा कि ठीक है, ये आपका बात सही है, लेकिन जब आप आग लगा कर छोड़ देते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि आप मुझे कहाँ तक फैलना है, वो तो पूरा जंगल में फैल जाएगा। लेकिन अगर आपने वन विभाग के सहयोग से, अगर आप लोगों ने कहा कि नहीं, आज इस गांव के जो घास के मैदान है या घास के क्षेत्र है या जंगल है, वहाँ पर हम लोग को आग लगाना है, तो आप पहले बता दीजिएगा, पूरा स्टाफ को वहाँ बुलाइएगा, गाँव वाले भी तैयार हो रह जाए, और उस क्षेत्र में एक एक बना करके यहाँ तक कि आग जाने देंगे, आगे यहाँ आगे जाने नहीं देंगे, वहाँ पर पहरेदारी करें और नीचे से आग लगा दें। जैसे आग लग कर वहाँ तक पहुँच जाए, उसको आग को बुझा करके, फिर सब कुछ बुझा करके वो लोग आ जाए, तो अपने क्षेत्र में ही आग लग गया, वो घास का पैदावार भी हो गया और जंगल में आग फैला भी नहीं। लेकिन आप चोरी छुपे रात में जाकर कहीं पर आग छोड़ के आ जाएंगे, तो वो आग तो पूरा फैल जाएगा। तो ये सहभागिता में, मेरे विचार में, ये जो है अगर जिम्मेदारी समझ करके अगर हमारा अपना भी काम बन जाए और वनों में आग भी न लगे, इसके लिए सहभागिता करते हुए दोनों मिल करके, पार्श्व मिल करके एक योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित दहन कर ले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
1: इस बार वन विभाग ने एक बहुत अच्छी नए विचार के साथ आगे बढ़े हैं, जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। इस बार पिरुल को ग्रामीण जनता को दे दिया गया कि वो एकत्र करके, एक छोटी सी राशि भी उनको मिल रही है। तो इस तरह के कुछ और सुझाव हो सकते हैं कि जिससे हम अपने जंगलों को बचाएं?
0: पिरुल को एकत्रित करके वहाँ पर लगा करके इसको बेच, इसको करके धनराशि कमा करके थोड़ा लोगों का पिरुल को जलने से बचाने में इसमें जो दिलचस्पी हो सकती है।

0: आ जाएगा।
1: हम्म,
0: लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिरुल का प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान है। पिरुल को तो मैं कई बार गांव में जब बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि तो शिव जी का जटा है ये तो, नहीं जैसे गंगा जी को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जटा में संभाल लिया था गंगा जी को, इसी प्रकार की वर्षा के पानी से भूस्खलन न हो, भूशरण न हो, इसको बचाने के लिए पिरुल का एक लेप लग जाता है, उस बैंडेज नुमा बन जाता है और धीरे धीरे सड़ने के लिए उसमें इसमें रेजिन होने कारण से वो ज्वलनशील बन जाते हैं। तो इसलिए उसका दोस्त तो नहीं है, वो तो अपने काम करने के लिए उसको उसका है, और वो पूरा एक पट्टी जैसा बना लेते ताकि बारिश के पानी का जो आता है वो पूरा मिट्टी को धो के न ले जाए, ये बनता है। लेकिन अगर इसको तो हम लोग सीमित मात्रा में निकालना चाहिए, सीमित मात्रा में गांव के आसपास में निकाल ले सकते हैं, लेकिन पूरे
1: सड़कों के
0: जंगल
1: किनारे।
0: सड़क किनारे में कहीं पर निकाल लें, लेकिन पूरे जंगल में निकालने से इसका प्राकृतिक जो जो व्यवस्था है
1: हाँ, उपयोगिता
0: उसमें
1: है उसकी।
0: हस्तक्षेप हो, उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा, वो उचित बात नहीं हुआ ये।
1: निश्चित तौर पर जो जनता है और जो आपके सुझाव हैं वो इन चीज़ों पर अमल करेगी कि हाँ ठीक है, जो सड़क के आसपास के जगह है जहाँ पर कि हमारी मृदा संपदा को नुकसान ना हो, सुरक्षित रह सके। इसके अलावा एक सामूहिक चेतना तो जरूरी है रसाली साहब, कि जनता ये समझे कि जंगल उसके हैं। आपका क्या संदेश है?
0: मेरा तो संदेश तो ये कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि पानी को हम तो बचाए रखें ताकि पानी पूरा गंगा घाटी में मिलते रहे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे उत्तर देवभूमि के प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है कि वनों में आग न लगने दिया जाए और लापरवाही न बरते और इसी तरह से हमारे जंगलों को सुरक्षित वन अग्नि से सुरक्षित रखा जाए, ये मेरा अनुरोध रहेगा सबसे।
1: रसाली साहब, आप कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ वनाग्नि पर हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आप और आपके श्रोताओं का धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप SS रसायली से विनय ध्यानी की वनाग्नि और जन भागीदारी विषय पर ये महत्वपूर्ण बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं बातचीत का लाभ हमारे किसान साथियों को ज़रूर मिलेगा और हाँ, वन है तो जीवन है, इसलिए कभी भी इस तरह की आपको जंगल की आग दिखाई दे तो तुरंत आपने जो वन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करना है, जो नज़दीकी वन चौकी है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कहा गया है कि जन भागीदारी, तो आप जन भागीदारी यानी कि समूह में उस आग को बुझाने में काफ़ी हद तक अपना भी योगदान दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, ये सुनाते हैं एक बुंदेलखंडी लोकगीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है साथियों, आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथियों, खेती किसानी के साथ साथ अगर हम बात करें कुक्कुट पालन की, जी हाँ, मुर्गी पालन जिसे हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में, कम लागत में आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। देखिए, खेती किसानी तो आप करते हैं, आपके पास जगह पर्याप्त मात्रा में है, तो आप अगर मुर्गी पालन करते हैं तो इससे जो कृषि के साथ साथ आपको अंडों से या चिकन से जो आमदनी होने वाली है, काफ़ी हद तक वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। दुगनी आमदनी आप लगा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए सरकार द्वारा भी कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनका लाभ हमारे जो साथी हैं उनको मिले। अच्छा फार्म आपके पास होना चाहिए, फार्म का डिजाइन इस तरह से हो कि वहाँ पर हवा का आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में होते रहे, खुला आपका होना चाहिए और जालीदार, साफ सफाई साथियों आपने जो फार्म है इनकी अच्छे ढंग से रखनी है, क्योंकि कई सारी बीमारियाँ हमने पोल्ट्री फार्म में ऐसी देखी हैं जो गंदगी की वजह से पनपती हैं, इसलिए साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना है। और मुर्गी पालन में साथियों जो सबसे ज़्यादा खर्च देखा गया है वो उनके दाने पर होता है। 70% तक का खर्च माना जाता है कि मुर्गी पालन में उनको हमें दाने पर करना होता है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता का संतुलित आहार आप उनको दें, समय पर आप टीकाकरण करवाएं, विटामिन डी और कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी जो बढ़ावार है वो अच्छे से हो। और हम तो यही कहेंगे कि खेती किसानी के साथ अगर आप इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों से जुड़ते हैं, मिश्रित कृषि करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको मुनाफा हो सकता है। और अब साथियों, कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें। पत्र भेजने के लिए साथियों आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और अपने पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, भैया विकास चमोली को दें अनुमति, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल लैंसडोन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का उत्साहवर्धन करो, वार मेमोरियल में शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित कर विकास योजनाओं की समीक्षा करी। नई टिहरी में बहुदेशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविरों का आयोजन, आमजन के निःशुल्क कानूनी सहायता और अलग अलग सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में अवैध रूपल संचालित हार्ट मिक्सिंग प्लांट में प्रशासनिक कार्रवाई, कई अनियमित

0: विक्रेताएं मिलनक बाद प्लांट के सील करो और राज्यक अलग अलग हिस्सों में भूल हल्क दियोक संभावना और के अंधड़क चेतावनी। अब समाचार विस्तारल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल अपन द्वि दिनों के लैंसिडोन दौरे के दौरान आज सैनिक सम्मेलन में शामिल होवे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनर परिवार वालों का उत्साह वर्धन करो। यह बीच उनुल वार मेमोरियल पहुंच वीर शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित कर और वीर सैनियों के सम्मानित करो। राज्यपाल गढ़वाल राइफल्स वीरता और राष्ट्र सेवा भावना की सराहना कर वीर कह कि रेजिमेंट देशक गौरव और शौर्य पहचान रही छू। उनुल कह कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि छू और यहाँ के जवानों में राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा रह छ। यह बीच गढ़वाल राइफल्स केंद्रक बेहतरीन योगदानक लिजी विशेष ट्रॉफी ले दी गई। अपन द्वि दिनों कार्यक्रमक दौरान राज्यपाल जिला में चल रही अलग अलग विकास योजनाओं के लिए समीक्षा करी। बैठक में पर्यटन, सड़क, पेयजल, स्वरोजगार और दूसर विकास कामों की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों के लैंसडोन में आधुनिक पुस्तकालय विकसित करण और पर्यटनक दगड़ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने निर्देश दी। नई टिहरी में आज उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीतालक तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविरक आयोजन करी गए। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित यह शिविरक आयोजन के निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अलग अलग प्रमाण पत्रों की सुविधा मिलन। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति व राज्य विविध सेवा प्राधिकरण कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी व विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आलोक मेहरा उपस्थित रही। यो मौके पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को कि शिविरक उद्देश्य न्याय के समाजक अंतिम जाने तक पुजूर छू। उनल को कि विविध सेवाएं केवल न्यायालयों जाने सीमित न बल्कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद जस मामलों में ले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा। उनल लोगों थे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रूणक आह्वान करो। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, पुलिस और पशुपालनक दगड़ कई विभागों ठ्याल लगाबेर लोगों थे समस्याओं का समाधान करो। यो दौरान आय, जाति, दिव्यांग व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ले बनाई गयी, जबकि स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा का वितरण करो। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: बागेश्वर जिला सुंदर ढूंगा घाटी में स्थित 15,092 फीट ऊंच कनकाटा दर्रा के युवा ट्रैकर्स एक टीम 3 दिनों में सफलतापूर्वक पूर कर दी। यह दर्रा सुंदर ढूंगा घाटी कठिन और रोमांचक ट्रैकों में मानी जा। दुर्गम पहाड़ी बाटों, ह्योल ढकी ट्रैक और ऊंचाई में ऑक्सीजनजनक कमी जस चुनौतियों के बावजूद ले दलक यह अभियान पूर करो। ट्रैक दौरान खराब मौसम ले मुश्किल बढ़ाई तब ले टीम संयम और आपसी तालमेल यात्रा पूरी करो। माउंटेन गाइड और अभियान दलक लीडर जीतू दानुल बता कि सुंदर ढूंगा प्राकृतिक सुंदरता यह ट्रैक खास बनू। उन्होंने कह कि यश अभियान जवानों के साहसिक पर्यटनक तरफा लुभुणक दगड़ ही पर्वतीय क्षेत्रों के पछाण दिलू।
2: ये जो कनकाटा पास ट्रैक था, ये टोटल 4 लोग थे, इसमें 3 लोगों ने कनकाटा पास पूरा किया और एक जो मेंबर थे हमारे वो सुकराम से वापस आए, उसी रूट से सामान लेकर वापस आए, वो बैकअप टीम में थे। और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था और इसको हमें पूरा करने में जातुली 3 दिन लगे। 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कम्प्लीट हो गया था ये हमारा।
0: उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संघक पदाधिकारियों आज ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ देहरादून में शिष्टाचार भेंट करी। यह दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों बदली, पदोन्नति, मृतक आश्रित नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों से जुड़ी अलग अलग मामलों को लेकर श्री चौधरी को मांग पत्र सौंपी। मंत्री भरत सिंह चौधरी कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों के ध्यान सुनबेर को कि सभ्य मामलों के नीतिगत और न्यायिक हिसाबल समाधान करी जाल। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समस्याओं के जल्द सुलझाने के निर्देश ले दी। श्री चौधरी को कि कर्मचारी केले विभाग कार्यप्रणाली खास हिस्सा होनी और उनर मुश्किलक बखत पर सुलझुण सरकारक पहली प्राथमिकता छू। अलवर जिला सल्ट क्षेत्र में झीमार में अवैध रूप चलने हार्ट मिक्सिंग प्लांट पर

0: प्रशासनल ठूल कार्रवाई कर बेर प्लांट के सील कर हाली। संयुक्त निरीक्षण टीमें जांचक बखत कतु के गंभीर कमी पाई, एक बाद कार्रवाई करी गई। बताई जा कि पिछील करीब द्वि मैणों बटी प्लांटक संचालन बिना जरूरी अनुमति करी जानो छी। स्थानीय लोगों पर्यावरण और सुरक्षा के खतरा बताए और एक शिकायत प्रशासन थे करी। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचनक बाद प्रशासन एल खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों टीमल मौक पर जयबेर निरीक्षण करो। जांच में सामणी में आई कि प्लांटक पास संचालनक जरूरी इजाजत नी छी। दगड़ ही चिमनी निर्धारित मानकों से कम ऊंचाई पर पाई गई और परिसरक चारों तरफ नियमानुसार बाड़ नी लगाई गई छी। खनन अधिकारी राहुल नेगील बता कि कतु के नियमक उल्लंघन के देखभेर प्रशासन एल प्लांट के तुरंत प्रभाव से सील कर दे।
1: मैं मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा सीटीओ और सीडीए की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है खनन विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया। ये मगरेतर कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब पर इसमें स्थित रिपोर्ट दी जाएगी। कब तक प्लांट बंद रहेगा?
0: उत्तराखंड में भोलबटी मौसम एक बारी फिर से बदलनक आसार छिन। विभागल गड़गड़ाट चाल चमकण और हाव बयाव और दियो को लेबर चेतावनी जारी करी छु। कतुके जागों में हल्क से मध्यम बरखा है सके, वे मैदानी जिलों में कै कै हल्की बरखा गरज कदगड़ बौछार पड़ने की संभावना छू। 4,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है सके। विभागल पर्वतीय जिलों में चाल चमकण और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज हाव बयाव चलण अनुमान जताई छू। वे 12 और 13 मई को मौसम गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना छू। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमो बागेश्वर और पिथौरगढ़ जिलों में कै कै तेज बरखा डावपड़न और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा चलने की संभावना जताई छू। मौसम विभागल चार धाम यात्रा में जानी वाल यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रोणी वाल मैसों के सतर्कता से रोण सलाह दी। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की संभावना जताई छू।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमार सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पौड़ी जिला सतपुली स्थित खैरासैण में नयू राजकीय महाविद्यालय भवनक उद्घाटन करो। येल छात्र छात्राओं को अपनी क्षेत्र में भल उच्च शिक्षा सुविधाएं मिल सकल। सतपाल महाराजल को कि नई सुविधाओं से सुजसित यह भवन विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेल। वे डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम करने, तब वे ग्रामीण क्षेत्रों के जवानों को ले आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सकल। एक बात सतपाल महाराजल सतपुली झील निर्माण कामों का निरीक्षण करो, अधिकारियों के गुणवत्ता दगड़ समयबद्ध तरीका से काम पूर्ण करने का निर्देश दी। उन्होंने कहा कि करीब 56 करोड़ डबलों की लागत से बनने यह झील पूर्ण होने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के बढ़ावा मिलल। चंपावत जिला रोणीवाल पशुपालकों के आईटीबीपी के दगड़ जुड़बेर स्वरोजगार को ठूल मौक मिलो। आईटीबीपी और पशुपालन विभाग बीच है समझौता से वहाँ रोणीवाल पशुपालकों 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट के 376 किलो जिंदा कुखड़ों की आपूर्ति करी। जिलाधिकारी मनीष कुमार निर्देश में पशुपालन विभाग टीमल मौक में पहुंचबेर कुखड़ों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता की जाँच करी। आपूर्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाई धरना लीजिए आईटीबीपी अधिकारियों और विजिलेंस टीमें निरीक्षण करो। पशुपालन विभाग के अनुसार यह पहल से स्थानीय पशुपालकों के अपने उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार मिलना है और ग्रामीणों की आजीविका के बढ़ावा मिलना है। अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल लैंसडाउन में सैनिक और पूर्व सैनिकों का उत्साहवर्धन करो। वार मेमोरियल में शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित कर विकास योजनाओं की समीक्षा करी। नई टिहरी में बहुदेशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन, आमजन के निःशुल्क कानूनी सहायता और अलग अलग सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हार्ट मिक्सिंग प्लांट में प्रशासन ने कार्रवाई, कई अनियमितता मिलने पर प्लांट को सील करो। और राज्य के अलग अलग हिस्सों में भोल हल्क द्योग संभावना और कह अंधड़क चेतावनी। एक दगड़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।

कुमावनी प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

नकाब फिल्म से आप सुन रहे थे कि जावेद अली की आवाज़ में समीर के बोल थे प्रीतम का संगीत। आशिकी 2 फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और पलक मुछल की आवाज़ों में। जीत गांगुली का संगीत है, इरशाद कामिल की शब्द रचना।

डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे गीत। कमाल खान की आवाज़ में विशाल शेखर का संगीत था और गीतकार थे रजत अरोड़ा। जन्नत 2 फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत। आवाज़ है जावेद अली की। इस गीत को लिखा है संजय मासूम ने और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान।

श्रोताओं, इस समय हम हैं श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय मुखानी हल्द्वानी उत्तराखंड में, जो कि मुखानी चौराहे पर है, शिव मंदिर के बिल्कुल निकट। और हमारी मुलाकात हो रही है फिर से इस एपिसोड में नाड़ी वैद्य श्री

0: राहुल गुप्ता जी से, अक्सर लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद केवल चश्मा हटाने तक ही सीमित है, लेकिन आपके चिकित्सालय में राहुल जी, यूवीआईटिस, रेटिनोपैथी और ब्लेफारोस्पैज्म जैसे गंभीर रोगों का उपचार कैसे हो पा रहा है और लोगों को इसके बारे में क्या जानने की जरूरत है, थोड़ा ये बताइए।
1: धन्यवाद। आयुर्वेद ग्रंथ में सुश्रुत संहिता में नेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसको जानने के लिए एक विशुद्ध आयुर्वेद दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आधुनिक निदान करके फिर उसका आयुर्वेद चिकित्सा अगर कोई करता है तो उससे कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे चिकित्सालय में केवल लक्षणों का ही नहीं, बल्कि शरीर के दोषों, वात पित्त कफ को संतुलित कर नेत्र की पोषण व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। तो चिकित्सा पद्धति जैसे बदलती है, वैसे ही रोग की साध्य साध्यता या फिर प्रोग्नोसिस बदल जाती है। चिकित्सा पद्धति बदलने पर रोग की साध्य साध्यता भी बदलती है। कुछ रोग जो एलोपैथी में ठीक नहीं हो पाते या उनके लिए सर्जरी नियत है, तो आयुर्वेद में वो आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि दवा के साथ साथ आयुर्वेद में पंचकर्म और लाइफस्टाइल करेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि नेत्र रोगों की चिकित्सा में आयुर्वेद को एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है।
0: डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बताइए कि जब आपके डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों में आंखों के पर्दे पर सूजन या रक्तस्राव हो जाता है, आयुर्वेद में रक्त मोषण और तत्पर जैसी क्रियाएं इसे कैसे ठीक करने में मदद करती हैं, थोड़ा ये बताइए।
1: जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, इसमें आँखों में जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं वो उसमें फट जाने के कारण खून का एक धब्बा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रकाश अंदर ना जाने के कारण आँखों की रोशनी कम होती है या अंधापन भी होता है। ऐसे में आयुर्वेद में हमारे चिकित्सालय में रक्त मोक्षण थेरेपी की जाती है, जिससे जो लीच होती है वो जमा हुआ थक्का वहाँ से निकाल देती है। लीच के थूक में एक हिरुडिन नाम का एक पिगमेंट होता है, या उससे क्या रहता है कि खून पतला होता है, थक्का निकालने के साथ साथ वो अंदर ही अंदर उस क्लॉट को डिसॉल्व करती है और वहां की संरचनाओं की सूजन कम होती है, जिससे आंखों की रोशनी धीरे धीरे सुधर कर वापस आ जाती है। अगले चरण में हम रोगी का नेत्र तर्पण करते हैं, जिससे ऑप्टिक नर्व और वहां की कोशिकाओं को मजबूती मिलती है और रोग पलट के वापस नहीं आता है। इसमें मैं हाल ही में अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक रोगी था, विट्रस हेमरेज के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने 1 महीना उपचार किया एलोपैथिक, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो हमने इसी पद्धति के अनुसार उसका पहले रक्त मोक्षण किया, फिर उसका तर्पण किया और रसायन चिकित्सा दी, और वो व्यक्ति आज पूरी तरह से स्वस्थ है। और क्योंकि हम इस केस को डॉक्यूमेंट कर पाए थे, तो ये केस हमने अपना एक इंटरनेशनल जर्नल है जो है यूरोपियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड क्लिनिकल मेडिसिन में, इसमें 2025 के एडिशन में ये केस जो है पब्लिश भी हो चुका है।
0: ग्लूकोमा या ब्रेन ट्यूमर में आंखों का दबाव बढ़ने से नसों को नुकसान पहुंचता है, क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई विशिष्ट औषधियां या पंचकर्म क्रियाएं हैं जो ऑप्टिक नर्व को दोबारा सक्रिय कर सके?
1: जी बिल्कुल है। आयुर्वेद में जो रक्त मोक्षण चिकित्सा का अभी वर्णन हुआ है, वह आंखों के प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, जिससे आंखों का प्रेशर कम होके ऑप्टिक नर्व का डैमेज जो है वो ठीक हो जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी हाल ही में 2022 में जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास हुआ था। उस समारोह में जो पूर्व केन्या के प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी रोजमेरी ओडिंगा को बुलाया गया था, क्योंकि 2017 में रोजमेरी ओडिंगा जी जो है अपने ऑप्टिक नर्व डैमेज के कारण, जो ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और अंग्रेजी इलाज फायदेमंद ना होने की वजह से उन्होंने केरला में श्रीधरियम आयुर्वेद चिकित्सालय में इसका इलाज कराया और उनकी आंखों की रोशनी पूरी वापस आ गई। तो इसी केस को प्रेजेंट करने के लिए हमारे चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजमेरी अडिंगा को इस अवसर पर अतिथि के रूप में बुलाया, जो कि आयुर्वेद की शक्ति को दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास था।
0: निश्चित ही ये प्रयास लोगों के सामने फलीभूत होकर के आ रहा है और आप भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, आपके भी प्रयास हैं। यूवीआईटिस जैसे रोगों में जहां आंखों में बार बार सूजन आती है, वहां आयुर्वेद की इम्यूनो मॉड्यूलर चिकित्सा का क्या महत्व है, ये थोड़ा बताइए।
1: जी, यूवेटिस आंखों की एक ऐसी गंभीर व्याधि है जिसमें आंखों में लालिमा होती है, आंख लाल हो जाती है, तेज दर्द होता है, आंख में चमक सहन नहीं कर पाता रोगी, या आंखों के सामने फ्लोटर्स या धब्बे जैसे तैरने लगते हैं, और अंत में जाके रेटिना में रेटिनल डिटैचमेंट होने के कारण रोगी अंधा हो जाता है। आधुनिक मतानुसार यूवेटिस में कोई सटीक कारण उसके पीछे ना मिलने के कारण उनका ऐसा मानना रहता है कि जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वही आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन आयुर्वेद का सोचना इससे भिन्न है। दरअसल आयुर्वेद में ये माना जाता है कि शरीर में हुए किसी भी रिएक्शन, जैसे एसिडिटी हो गया, स्किन एलर्जी हो गया इत्यादि को जब भी दबाने का प्रयास किया जाता है, तब यह प्रक्रिया रक्त में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे यूवेटिस होता है। इसके अलावा खाने में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है, वह भी ये काम

0: करते हैं। उदाहरणतः जैसे दही अगर हम पका के लेते हैं तो वो आँखों के लिए नुकसानदायक है, या फिर हम दूध और नमक का सेवन करते हैं वो नुकसानदायक है, या फिर कुछ एक ऐसे आइटम रहते हैं जैसे पनीर है वो आँखों के लिए नुकसानदायक है। हमारे चिकित्सालय में खान पान में बदलाव कर बीमारी को रोका जाता है, और फिर आयुर्वेद रसायन चिकित्सा द्वारा नेत्रों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग को मुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से हम ऑटोइम्यून डिजीज को जो आँखों से संबंधित है उसको सॉल्व करते हैं।
1: निश्चित ही। और श्रोताओं, अगर आप श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय में कोई भी चिकित्सीय सेवाएं लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7895372936 पर नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। और शनिवार को ये चिकित्सालय बंद रहता है। तो इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। काव्यांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनिल कुमार अमरोही की काव्य पाठ।
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

एक और रचना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ज़्यादातर मैं नज़्म लिखता हूँ, तो एक नज़्म आपके सामने प्रस्तुत है। मैं खुश्क रेत हूँ और आंधियों की जद में हूँ। मैं खुश्क रेत हूँ और आंधियों की जद में हूँ। मुझे समेट ले मेरे मालिक, कहीं बिखर ना जाऊँ मैं गमों की राह में। मुझे समेट ले मेरे मालिक, कहीं बिखर ना जाऊँ मैं गमों की राह में। तप तप के साया हो गई जिंदगी अपनी, तप तप के साया हो गई जिंदगी अपनी। कहीं इन गमों में तप के और निखर ना जाऊँ मैं, कहीं इन गमों में तप के और निखर ना जाऊँ मैं। ये थी एक छोटी सी नज़्म। एक नज़्म और आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। किसी रात एक बात लिखेंगे, किसी रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। कोई जज्बात नहीं, अपने ही अरमान लिखेंगे। हसीन आलम नहीं, अपने ही हालात लिखेंगे। बहुत शिकायत है हमें तुझसे ऐ ज़िंदगी, बहुत शिकायत है हमें तुझसे ऐ ज़िंदगी। अब तेरे बारे में भी एक किताब लिखेंगे, अब तेरे बारे में एक किताब लिखेंगे। लिखते लिखते ख़त्म ना हो जाए ये ज़िंदगी, लिखते लिखते ख़त्म ना हो जाए ये ज़िंदगी। एक ही शब्द में, एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखेंगे। किसी रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। एक रचना और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये भी नज़्म है। झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे ऐ दोस्त, झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे ऐ दोस्त, थे तेरे इंतज़ार की लकीरें हैं। झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे ऐ दोस्त, ये तेरे इंतज़ार की लकीरें हैं। तुझको

0: पर अब तो दरअसल जीना मुहाल है, अब तो दरअसल जीना मुहाल है। झुर्रियाँ नहीं चेहरे पे है दोस्त, ये तेरे इंतज़ार की लकीरें हैं, ये तेरे इंतज़ार की लकीरें हैं। एक चार लाइनें आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ। सवाल ये था कि कैसे जिया जाए, सवाल ये था कि कैसे जिया जाए, जवाब आया कि जख्मों से दिल लगी करके, जवाब आया कि जख्मों से दिल लगी करके। एक और शेर पेश खिदमत है। दर्द भी शायराना दिए हैं जिंदगी ने, दर्द भी शायराना दिए हैं जिंदगी ने, हम शायरी ना करते तो और क्या करते, हम शायरी ना करते तो और क्या करते। कुंदन हुए हैं आग भी, कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगाकर हम, कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगाकर हम, हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली, हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। एक नज़्म और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बदल गए हैं वो, बहुत बदल गए हैं वो, या ज़रा सा संभल गए हैं वो, बहुत बदल गए हैं वो, या ज़रा सा संभल गए हैं वो, सब वक्त वक्त की बात है, सब वक्त वक्त की बात है, कभी दिन था अब रात है, कभी दिन था अब रात है, सब वक्त वक्त की बात है। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता किसी और के सांचे में ढल गए हैं वो, रफ्ता रफ्ता किसी और के सांचे में ढल गए हैं वो। ये दिल बड़ा ही नाजुक है, उनके दीदार को ही भावुक है, ये दिल बड़ा ही नाजुक है, उनके दीदार को ही भावुक है, लेकिन रकीब के वास्ते अब शायद पिघल गए हैं वो, लेकिन रकीब के वास्ते अब शायद पिघल गए हैं वो। अंतिम ये है बंद। दिल ये कहता है उनको देखकर, दिल ये कहता है उनको देखकर, ऐ अनिल अमरोही अब तो तेरी कड़वी कसैली बातों से बेहद संभल गए हैं वो, बेहद संभल गए हैं वो, बहुत बदल गए हैं वो, बहुत बदल गए हैं वो। एक और चार लाइन आपके सामने प्रस्तुत हैं। फासला बढ़ा लिया तुमने, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने दीवार पक्की कर ली, ज़रा सी गलतफहमी ने देखो, ज़रा सी गलतफहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली, ज़रा सी गलतफहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली।
1: काव्यांजलि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार अमरोही की काव्य पाठ। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विविध कलाकारों के स्वर में गाए मसीही भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के स्वर में गाए मसीही भजन। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

जिद फिल्म से आप सुन रहे थे गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा था, संगीतकार थे शारिब तोशी। अगला गीत जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाजों में है, संगीत और बोल तनिष्क बख्शी की।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: जब वी मेट फिल्म से अब आपको सुनवा रहे हैं ये अंतिम गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। प्रीतम का संगीत है, आवाज मोहित चौहान की।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण

0: केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट

0: एंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana.

0: May 10th, he honored the spirit of the 1857 freedom struggle and called for national unity and duty. Let's listen to what the Prime Minister said on the significance of the 10th of May and why he chose the date to conduct the visit.
1: साथियों, आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है. 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी. समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है.
0: In his speech, the Prime Minister also addressed the global challenges such as the unrest in West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्. अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है. ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
0: The Prime Minister in recent years has repeatedly

0: linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health, and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga, and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education, and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स. Let's listen to what he said.
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us. Spotlight.
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। लकी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत अदनान सामी का।

अपने श्रोताओं को हम पुनः याद दिला दें, कल प्रातः 11:10 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: फिल्म संगीत में ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तुलसी कुमार और केके की आवाजों में। शब्द रचना है नीलेश मिश्रा की और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। टीटू एमबीए फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह और विभा सराफ की आवाजों में।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrani Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापुताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chaputal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: Continuing his Veena recital, Vidwan D. Srinivas will now present a composition of Tyagaraja in the rag Nasika Bhushani set to Adital Trisragati.

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पीहोली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75

75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी